0: चर्चा अ जर्नी विद इन एक शाम भजन भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना वहां नाचते मिलेंगे हनुमान।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

बात करते हैं जिंदगी के सबसे आसान बहाने की, कल करेंगे। न जाने कितनी बातें हैं जो हम रोज खुद से कहते हैं, कल से जल्दी उठेंगे, कल से एक्सरसाइज शुरू करेंगे, कल फोन करेंगे, कल मिलेंगे, कल वो काम कर लेंगे, और फिर कल आता है, काम फिर अगले कल पर चला जाता है। कभी गौर किया है, हम हर छोटी चीज के लिए कल बचा कर रखते हैं, लेकिन समय कभी बचा कर नहीं रखता। किसी से बात करनी है कर लीजिए, किसी से मिलना है मिल लीजिए, कुछ शुरू करना है आज से शुरू कीजिए, क्योंकि कल आता तो रोज है लेकिन आज दोबारा कभी नहीं आता। और आज के नाम ये अगला ट्रैक। हमारे साथ बने रहिए ठापंस में, रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर।

चलो दोस्तों, कुछ बातें अधूरी रह जाएं तो पूरी जिंदगी चुभती हैं। हम सबके पास कोई ना कोई एक ऐसी बात होती है जो कहनी तो बहुत पहले थी, लेकिन हम सोचते हैं कि कभी सही वक्त मिलेगा तो कह देंगे। किसी से माफी मांगनी थी, किसी को शुक्रिया कहना था, किसी को रोकना था, या बस इतना कहना था तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, लेकिन सही वक्त आया ही नहीं और देखते देखते इंसान बदल गए, रास्ते छूट गए। अब वो बातें बस एक खामोश टीस बनकर रह गई हैं। तो वो इंसान और वो बात जो आज आपके सामने है उसे आज कह दीजिए, क्योंकि ये एहसासों की टीस कि कल कह देंगे या कभी मौका मिला तो कह देंगे, ये फिर जिंदगी भर परेशान करती है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत मौका आज मिला है ना सुबह के साथ। आइए इसी बात पर एक और ट्रैक के साथ चलती हूँ आपको आगे लेकर। इंजॉय करते रहिए और मेरे साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।

सो वेलकम बैक इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रिजब रिस्वानी 1701 एम पर। लाइफ में ना बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन देते हैं, उनको जो चाहिए वो लाकर देते हैं, उनकी सारी विशेष पूरी करते हैं, बट यू नो मुझे लगता है अपने बच्चों को जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको सिखानी है उस पर ध्यान नहीं देते, और वो है ना सुनना। रिसेंटली आपने भी जरूर सुनी होगी महाराष्ट्र इंडिया की न्यूज, जहां पर एक फादर ने अपने बेटे को आईफोन दिलाने से मना कर दिया। उसके बाद जो हुआ वो बहुत भयानक था। बेटा गिर गया, पहाड़ से कूद गया, पहले उसने बहुत सारा ड्रामा किया कि वो कूद जाएगा, और उसको बचाने में, उसको पकड़ने में उसके फादर गिर गए उसी पहाड़ से, और मदर की भी गिर करके उन दोनों को बचाने में डेथ हो गई। यू नो ये ऐसा नहीं है कि बड़ा इकलौता केस है, इस तरह के कई केसेस जो हैं वो हम और आप रोज सुनते हैं। आई थिंक हम अपने बच्चों को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना रहे हैं, उन्हें ना सुनने की आदत नहीं रह गई है। हमारे जमाने में हमें अगर कुछ चाहिए होता था तो हमें उसके लिए वेट करना पड़ता था, और जनरली ऐसा भी होता था कि पेरेंट्स मना कर देते थे कि भाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते और वो चीज़ नहीं मिलेगी, और हम क्या करते थे, हम आर्ग्यू नहीं करते थे, हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की आदत डेवलप थी, क्योंकि हमें सिखाया गया था कि तुम जो चाहो वो हर चीज़ तुम्हें मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। और आज की जनरेशन उस चीज से दूर भाग रही है, उस ना सुनने से दूर भाग रही है, और नतीजा जो है वो हम सबके सामने है। तो अपने बच्चों को आप सब कुछ दें या कुछ दें या ना दें, लेकिन एटलीस्ट ना सुनने की आदत उनमें डालें, उनको सेंसिटिव ना बनाएं। आप उनके साथ अच्छा नहीं बल्कि बहुत बुरा कर रहे हैं। सदाक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी 1701।

नो, आजकल हम जब भी इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करते हैं ना, तो हम लोगों की लाइफ में बड़ा परफेक्शन देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी जिंदगी में कहीं पीछे रह गए, पीछे छूट गए। लोगों की नई गाड़ी, परफेक्ट जॉब, परफेक्ट फैमिली, हंसी खुशी, जो फोटो अपलोड्स कर रहे हैं, हमें लगता है कि यार हमने तो ये सब कभी जिया ही नहीं। लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं, और बहुत सारे वो रील्स आते हैं ना कि जिंदगी जियो, हम जी रहे। हमें लगता है कि यार हमने तो अपनी जिंदगी जी नहीं, हम तो उलझ के रह गए अपनी फैमिली परिवार में। बट यू नो व्हाट, बहुत सारी चीजें आपको दिखती हैं लेकिन वैसी होती नहीं है। जो लाइफ आपको परफेक्ट दिख रही है, जरूरी तो नहीं है कि सबकी लाइफ वैसे ही सच में परफेक्ट हो। और दूसरी चीज, आपने वो लाइफ ना जी हो ना सही, लेकिन आपकी लाइफ के अपने अचीवमेंट्स हैं, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं अगर आप, तो लाइफ का अचीवमेंट है। अगर आप अपनी जॉब को सक्सेसफुली निभा रहे हैं, उसके साथ न्याय कर पा रहे हैं, वो आपकी लाइफ का अचीवमेंट है। अगर आप हर एक फेज को हंसकर मुस्कुराकर जी रहे हैं, वो लाइफ का फेज है, वो लाइफ का आपका अचीवमेंट है। आपकी फैमिली अगर आपके साथ जुड़ के रह रही है, वो आपकी लाइफ का अचीवमेंट है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है लाइफ में और वो आपकी हैं, वो शायद सामने वाला वो अचीवमेंट्स नहीं है उसके। तो हर किसी की अपनी जिंदगी है, हर किसी की अपनी लाइफ को जीने का तरीका है। दूसरों की चकाचौंध देख के अपनी लाइफ को हेलमत समझिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सदाक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर, आपके अपने ब्रेकफास्ट शो में। आइए सुनते हैं अभी अगला ट्रैक।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

अच्छा, एक बड़ी मजेदार बात है। देखिए, हम सबको अपनी प्रॉब्लम बताने के लिए कोई ना कोई एक इंसान तो याद आता है ना, सबकी जिंदगी में होता है, जो सुनता है, समझता है, हिम्मत देता है और कहता है कि सब कुछ हो जाएगा यार, तू टेंशन मत ले। लेकिन उससे भी मजेदार बात पता है क्या है, कि हम कभी उस बंदे से नहीं पूछते, उस इंसान से नहीं पूछते कि तुम कैसे हो, तुम्हारी जिंदगी में कोई उलझन तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि जो इंसान सबको समझता है, सबको सजेशन देता है या सबको संभालता है, उसे भी संभलने की जरूरत हो सकती है, उसे भी जरूरत हो सकती है कि कोई उससे पूछे या उसे संभाले या वो भी अपने दिल की बात कभी किसी के साथ शेयर करे। हम भूल जाते हैं। तो अगली बार जब आपके जहन में कोई एक ऐसा बंदा आए कि यार मुझे उसके पास जाना है, उसके पास जाके मुझे अपनी ये सारी बातें बताती हैं, तो वहां जाकर अपनी बातें बताइए, लेकिन उसके बाद उससे भी पूछिए कि तुम्हारी जिंदगी कैसे चल रही है। या कभी यूं ही जब आपकी जिंदगी में सब ओके है, उससे बात कीजिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। सुनते रहिए ठापन सताक्षी के साथ रेडियो प्रिस्वानी 570 AM पर।

वेल ये था आज इट हैपेंस पर हमारा आपका एक और प्यार भरा और प्यारा सा साथ। और इट हैपेंस में आज हमने कुछ खट्टी मीठी प्यारी सी मॉर्निंग की बातें की। आई होप कि ये सुबह के लिए बेहतरीन हो गई है। सो चलिए अब दिन शुरू कीजिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। अपनी जिंदगी के सारे गोल्स पूरे करने नहीं है एक ही दिन में, उसकी तरफ सिर्फ कदम बढ़ाना है। ये मत सोचिए कि सब कुछ अचीव कर लेंगे, वहीं से फिर टेंशन की शुरुआत हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक बार फिर से। ख्याल रखिए अपना, मस्त रहिए, खुश रहिए, जिंदगी को जीते रहिए। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग। नमस्कार।

से जो बरसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त, ऐ दोस्त।

पर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101 एम ते जी आज के संदेश शौलक दे नाल से बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी। ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा है पंजाबी गीतां दा तड़का। तो तुसी की गाना है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, बार फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी कितें भुल ना जाओ जरा भी। ते जुड़दे रहो साडे नाल, रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाने तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। ते चलो फिर तुसी इन्हां गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

0: beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

जी अनु जी वेलकम बैक, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड दे पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना दी। ता देखो राजेश खन्ना दा असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद दी फिल्म आखरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। ता राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मां दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथी महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मां दित्तियां सीगियां। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया नाल 1973 विच ब्याह किया सी ते ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना है थोनू, इन्हीं ये दसना जरूरी हुंदा ना, छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी पर पी लैंगी सुन लो।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोने वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दियां दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत आजमाई, दोनों नूं निराशा भी हथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तां सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गियां फिल्मों विच काम किया सी। ट्विंकल दी भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गियां फिल्मों विच काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: हनी ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।
3: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथोराइज्ड बाय

0: मिक्सिंग इन द हाउस हाउस
1: देखो बेड़ा हो चुका है थोड़े तो इजाजत लेने का, पर एक हो सुपरस्टार की गल करनी रह गई सीता सोचा उन्हों की गल भी जरूर कर ला ते उन्हों की गल कर लैनी है जी। तो सुपरस्टार ऋषि कपूर 1973 आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी दे नाल डेब्यू किया। उन्होंने अपने करियर दे विच बहुत शानदार फिल्मां दित्तियां सी। अपनी छवि चॉकलेटी रही हैगी उन्हां दी। ते ऋषि कपूर दे बेटे रणबीर कपूर ने अपने पिता की विरासत नूं अगे संभाल लिया है। वो अपने पिता नाल तो दो कदम अगे निकल गए। रणबीर कपूर ने 2007 विच सावरिया मूवी दे नाल डेब्यू किया। फिल्म फ्लॉप रही पर उन्होंने संघर्ष किया, फिर बहुत सारिया फिल्मां कीतियां ते ब्लॉकबस्टर रहियां ते रणबीर कपूर दे टैलेंट ते कामयाबी ते पूरी इंडस्ट्री ने मान ली हैगी, असी भी मान के हैगे। तां इह कुछ सितारे हैगे ने, उन्होंने बच्चे ने जिन्हां ने की किया थानू दस्या है। बाकी तुसी की किया सारा दिन तुसी जरूर दस्या करो, साडे नाल जुड़ते रह करो। रेडियो बरसोनी 101.1 FM साडा फेसबुक पेज है जी, बरसोनी @bersoni.com साडी ईमेल आईडी है। जरिया जिहड़ा भी अपनाउणा अपना लो, साडे नाल पता जरूर करते रह करो। बाकी अपना ख्याल रख्या करो ते मैं तां इही कहना कि कल करांगे मुलाकात। रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di entry cases nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offense, traffic drug offense में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks attorney yaar, I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे, ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट।
3: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहां से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
4: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहां अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
3: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
4: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ड ऑन ट्रस्ट।
5: कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
6: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
5: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
6: किस दुनिया में हो भाई? क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
5: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा, ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
6: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
7: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 04006644355 पर। याद रहे 04006644355 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
8: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at royleendrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट, फ्री ऑफ चार्ज। रिंग करे प्रकाश मेनन को, फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: Yes baby, but no compromise with quality and health. हम जाएंगे सिर्फ MC's Indian and Island Food.
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, quality spices, lentils, rice, flour और frozen sabzi from Fiji and India. Brisbane के best Indian butcher supplying farm fresh goat, lamb, chicken and duck और fresh local produce भी रखते हैं. साथ ही kitchenware and disposable plates की large range किसी भी function के लिए.
0: अरे वाह, intelligent हो गई हो.
1: MC's Indian and Island Food serving Brisbane since 1999. Open 7 days. Find us on Facebook or visit website mcsfoods.com.au. 1 by 268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvit from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे सिमरूं मैं।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
4: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
3: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
2: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
3: अरे ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
2: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
3: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
2: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
3: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई।
4: ओम्सॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

दोस्तों कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जेनिविया के साथ। दोस्तों ट्यूसडे का दिन है, हाउ आर यू फीलिंग टुडे। जी हाँ, कैसा रहा आपका अभी तक का दिन, सब कुछ जानना है मुझे और सब कुछ बताना भी है मुझे। जी हाँ, अगर अच्छा रहा है तो अपनी खुशियां हमारे साथ शेयर कीजिए, और अगर किसी वजह से नहीं भी अच्छा रहा है, इतना थोड़ा सा स्ट्रेस वाला रहा है, थकावट भरा रहा है, तो वो सारी चीजें हम खत्म करने वाले हैं, क्योंकि हम आपको राइड पर लेकर जाने वाले हैं, वाइब बनाने वाले हैं, क्योंकि ये है प्रोग्राम इवनिंग वाइब। बहुत ही अच्छे गाने, खूबसूरत गाने, बहुत ही मजेदार चीजें, किस्से, और हम बहुत सारी बातें भी आपके साथ करने वाले हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिचुअल के साथ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट डीप ब्रेथ एक्सरसाइज। नाउ दिस रिचुअल इज सो गुड कि आपको इमोशनली, साइकोलॉजिकली, फिजिकली तीनों तरह से हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और अगर आप किसी चीज की शुरुआत कर रहे हो तो आप बहुत ही अच्छे से उस चीज को कर पाओ कंप्लीट, ये भी सुनिश्चित करता है। तो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक बढ़िया से गाने के साथ, जिसका नाम है झूमे जो पठान में। जी सुनेंगे इसको और फिर करेंगे बहुत सारी और भी बातें।

जी हाँ दोस्तों, आरसे के साथ ये खूबसूरत गानों का समा तो शुरू हो गया है और आपको कहना पड़ेगा कि आपकी आरजे निव्या ने गाने तो बहुत ही अच्छे प्ले करने शुरू कर दिए आपके लिए, क्योंकि प्रोग्राम भाई मजेदार होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, थोड़ा सुरीला भी होना चाहिए, वाइब में लेकर जाए, मस्ती भी करवाए और कुछ ऐसी गलियों में भी लेकर जाए जहां पर हम कभी कभी जाते हैं। जी हाँ, तो आइए अब जरा बात करते हैं मौसम के बारे में। सबसे पहले मैक्सिमम टेम्परेचर 26 डिग्री सेल्सियस के करीब रहा, वहीं अगर अभी की बात की जाए तो 24.7 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको हो रहा है 24.4 डिग्री सेल्सियस के करीब। जी हाँ, ये तो हुई दिन की बात। रात की बात की जाए तो 13 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर में गिरावट आप देख पाएंगे और जैसे मैंने कहा था कि कोई बारिश के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है और यहां पर एयर क्वालिटी भी है एकदम फेयर। जी हाँ, तो ये तो हो गई आज की बात। अब जरा कल की यानी कि वेडनेसडे और थर्सडे की बात की जाए तो कल 25 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ 30% चांसेस बारिश के हैं, मतलब मुझे बादल दिख रहे थे। मैंने आपको पिछले कल भी बताया था कि वेडनेसडे के लिए थोड़ी सी बारिश प्रिडिक्ट की गई है और कुछ बादल भी प्रिडिक्ट किए गए हैं, तो ऐसा मौसम रह सकता है। थर्सडे की अगर बात की जाए तो 23 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर के साथ नो चांसेस ऑफ बारिश, मतलब 10% जो कि ना के बराबर होता है और सूरज जो है वो खिला खिला, वो जो स्प्रिंगी

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हां। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानूं लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानूं फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्बेन 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनियार जेनिविया के साथ। दोस्तों इसी के साथ अब क्योंकि प्रोग्राम में हमने मौसम के बारे में भी बात कर ली है, शुरुआत भी हो गई है, तो अब जरा आपकी फरमाइशों की बात हो जाए। मने आप कैसे अपने फेवरेट गानों को रिकमेंड कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। जी हाँ, सो ऑल यू नीड टू डू इज डायल करना है नंबर, और वो नंबर है +9182888717001। आई रिपीट, +9182888717001। तो बस फिर जल्दी से फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश। और जब तक आप भेज रहे हैं हमें अपनी फरमाइश, हमारी तरफ से एक और बढ़िया सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ कॉन्ग्रेचुलेशन टू मिस्टर टॉम हॉलैंड। जी हाँ, ऑफकोर्स उनके घर में कोई छोटी किलकारी नहीं बजने वाली है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, उनकी शादी भी हो चुकी है तो उसकी मुबारकबाद भी हम पहले ही दे चुके हैं। वेल, ये वाली मुबारकबाद हम उन्हें इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो ऑफिशियली हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम बन गए हैं। अगर आपको नहीं पता है इसका क्या मतलब है तो हम आपको साफ शब्दों में बता देते हैं। सो बेसिकली टॉम हॉलैंड की मूवीज ने इस दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई की है, मतलब ही इज ऑन टॉप। इससे पहले ये जो सरदाना के पास था, जी हाँ, जो सरदाना के पास ये उपाधि थी, मतलब इस नंबर पे नंबर वन जो थी वो जो सरदाना थी, क्योंकि उन्होंने बहुत जबरदस्त जबरदस्त मूवीज में काम किया है। वो अवतार में काम कर चुकी हैं, वो और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी मूवीज में काम कर चुकी हैं, वो स्टार वॉर्स में काम कर चुकी हैं। So, ऐसे में जो सरदाना जो है वो काफी टाइम से नंबर वन बनी हुई थी, उसके बाद स्कारलेट जोहेंसन थी, उसके बाद जो है वो रॉबर्ट डाउनी जूनियर थे, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे जो है टॉम हॉलैंड आए और उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। कैसे? इसी साल उनकी दो बड़ी मूवीज रिलीज हुई हैं। सबसे पहले क्रिस्टोफर नॉलन की द ओडिसी, अगेन जिसने $1.5 बिलियन की कमाई की है, और दूसरी बात कर लें हम तो स्पाइडरमैन द ब्रांड न्यू डे, मतलब $2.5 बिलियन, मतलब $2,500 मिलियन की कमाई कर चुकी है ब्रांड न्यू डे। एंड यू नो व्हाट, वो अभी भी थिएटर्स में लगी हुई है, एंड कर्टेसी टू बोथ द यू नो मूवीज बन चुके हैं नंबर वन। जी हाँ, जैसे वो नंबर थ्री पर थे, नंबर फोर पर थे, नंबर थ्री पर पहुंचे, नंबर टू पर पहुंचे, और अब फाइनली नंबर वन पर पहुंच गए। उन्होंने जो सरदाना, स्कारलेट जोहेंसन, रॉबर्ट डाउनी जूनियर सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन लेकिन लेकिन इसमें चेंजेस हो जाएंगे क्योंकि नवंबर में डूम्स डे आने वाली है और उससे रॉबर्ट डाउनी जूनियर फिर से नंबर वन हो सकते हैं। जी हाँ, मतलब मुझे लगता है हो नहीं सकते हैं बल्कि वही हो जाएंगे, क्योंकि मार्वल की जो डूम्स डे है उसका जो यू नो वाइब है और जो हाइप है वो इतनी ज्यादा बन गई है कि पूछो मत। पर अभी के लिए टॉम हॉलैंड जो है वो बन गए हैं हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर, और आपको मैं बता दूं कि उनकी मूवीज ने अभी तक $15.5 बिलियन की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की है। मतलब जितनी मूवीज का वो पार्ट बने हैं वो $15.5 बिलियन कमा चुकी है उन्हीं की मूवीज। दैट्स वाई ही इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम। एंड यू नो व्हाट द फन फैक्ट इज, एंड बहुत ही दिलचस्प चीज जो है टॉम हॉलैंड को लेकर, वो ये है कि बाकी सारे एक्टर जो इस लिस्ट में हैं वो या तो अपने 40s में हैं, 50s में हैं या 60s में हैं, लेकिन टॉम हॉलैंड इज द ओनली पर्सन जो कि सिर्फ अभी 30 के हैं और वो इस कारनामे को कर चुके हैं। मतलब ही इज जस्ट 30 एंड ही इज द हाईएस्ट ग्रॉसिंग एक्टर ऑफ ऑल टाइम। उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया है। सो इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कारनामा करना, टॉम हॉलैंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4,000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਵ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿੱਟ ਬਣਾਓ। ਅੱਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਦਰਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਬੁਸ਼ ਫਾਇਰ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਲਾਨ ਦੀ ਪਾਲ ਕਰੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰ।
2: ਓਏ ਰਾਹੁਲ, ਵੀਰੇ ਤੇਰੇ ਕੇਸ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ?
3: ਓ ਯਾਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਰੀਡ ਆ। ਆਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਲਾਇਰ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਮਾਈ ਕੇਸ।
2: ਗੋ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ ਵੀਰੇ, ਅਤੁਲ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੇ ਲਾਅ ਦੀ ਇੰਟਰੀ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਚ ਵੀ ਉਹ ਐਕਸਪਰਟ ਹਨ। ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ, ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਰੱਗ ਓਫੈਂਸ ਵਿੱਚ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਰਿਚ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਕਨਵੇਅੰਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਐਂਡ ਐਸੋਸੀਏਟਸ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਦਾ ਵਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ। ਐਂਡ ਦ ਬੈਸਟ ਪੁਆਇੰਟ, ਦੇ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਦ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੈਟ ਯੂ ਗੋ ਥਰੂ ਐਂਡ ਵਰਕ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਟੂ ਮਿਨੀਮਾਈਜ਼ ਇਟ।
3: ਥੈਂਕਸ ਤਨਵੀਰੇ, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Dosto, aap sun rahe hain Radio Brisbane 1701 AM show chal raha hai. Bye, mere aniyat ke saath. दोस्तों, इसी के साथ बाबा रामदेव फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं। जी हाँ, इफ यू डोंट नो हु बाबा रामदेव इज, तो आपको भारत और योगा के मामले में ज्यादा कुछ पता नहीं है। तो आइए जरा हम आपको बता दें, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली आपको पता होगा इनका एक ब्रांड भी है जिसके जो सैंपल्स हैं वो फेल होते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि हमारी चीजें पूरी तरह ठीक कर देती है। नाम गना से कि उनकी योगा टेक्निक्स जो है वो डेफिनेटली काम करती है, बट उनके जो प्रोडक्ट्स हैं और उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं है, और उनके सैंपल्स काफी बार फेल भी हो चुके हैं, उनको काफी बार फटकार भी लग चुकी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट तो अच्छे से ठीक कर देते हैं सबको। नाउ व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट बाबा रामदेव टुडे? बिकॉज बाबा रामदेव फिर से सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि अपेरेंटली उन्होंने एक नया आयुर्वेदिक हुक्का निकाला है। आप लोग बोलोगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट निविया? वेल, मैं इसके बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि ये चीज जितनी अच्छी दिख रही है और जितनी हेल्दी दिख रही है उतनी हेल्दी नहीं हो सकती। तो ये आयुर्वेदिक हुक्का जो है ये वायरल हो गया है इंटरनेट पर, एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू टॉक अबाउट इट। लेकिन एक्सपर्ट्स ने इसके बारे में भी काफी क्वेश्चंस जो है वो रेज किए हैं। सो एक वायरल वीडियो है जिसमें बाबा रामदेव जो है वो बता रहे हैं एक ऑनलाइन डिबेट में कि कैसे उन्होंने एक आयुर्वेदिक हुक्का जो है वो बनाया है, जिसके इंग्रीडियंट्स है मुलेठी, टर्मरिक, मस्टर्ड, काओ घी, ककड़ा सिंगी एंड देसी कैम्फर। जी हाँ, अब ये सारी की सारी चीजें में अगर आप देखें तो बहुत ही अच्छी चीज है, मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं ये बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं, और कहीं ना कहीं ये आयुर्वेद में तीन दोषास को ठीक भी करते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इसको सीधे कंज्यूम करने के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा रामदेव। यहाँ पर बाबा रामदेव कह रहे हैं कि अगर आप इनको जलाकर इनकी जो स्मोक है उसे इनहेल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपका जो कफ है और आपके तीनों दोषास जो हैं, जो आयुर्वेदिक दोषास होते हैं बॉडी में, वो ठीक हो जाएंगे। नाउ जैसे कि मैंने कहा कि इंग्रेडिएंट्स कितने भी अच्छे हों, और एक्सपर्ट्स का भी यही कहना है कि इंग्रेडिएंट्स कितने भी अच्छे हों, स्मोक अगर हमारी बॉडी में जाती है तो हमारे लंग्स पे इफेक्ट करती है, फिर चाहे स्मोक किसी भी चीज की क्यों ना हो। एंड दैट इज व्हाई स्मोकिंग इज बैड। इट्स नॉट जस्ट इन केस कि कोई भी टाइप की स्मोकिंग, आप बुरी चीजों की स्मोकिंग कर रहे हो तो वो ज्यादा बुरी है, वो ऑफकोर्स ज्यादा बुरी है, लेकिन किसी अच्छी चीज की भी स्मोक करना वो भी हमारे लंग्स के लिए गड़बड़ कर सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो जैसे कि मैंने कहा कि बर्निंग मटेरियल्स कैन एक्सपोज द लंग्स टू पर्टिक्यूलेट मैटर एंड अदर कॉम्पोजिशंस प्रोडक्ट्स। जी हाँ, सो बेसिकली स्मोक जो है वो किसी के लिए भी अच्छी नहीं है, फिर चाहे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हो, हेल्दी हो, अनहेल्दी हो। और यहां पर यही क्वेश्चन जो है वो एक्सपर्ट्स रेज कर रहे हैं, लेकिन बाबा रामदेव कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, मैंने हुक्का निकाला है, मैंने आयुर्वेदिक हुक्का निकाला है, ये सब ठीक कर देगा, तीनों दोषों को ठीक कर देगा। एंड ऑफकोर्स इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे हैं, हम उसमें बिल्कुल नहीं कह रहे कि इंग्रेडिएंट्स अच्छे नहीं है, लेकिन यहां पर हम इतना ही कहेंगे कि स्मोक इन जनरल, किसी भी चीज की स्मोक इनहेल करना इज बैड फॉर योर बॉडी, फॉर योर लंग्स, एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम वी शुड टॉक अबाउट इट। तो मैं ये कहूंगी कि बाबा रामदेव जी, आप सिर्फ योगा आसन सिखाएंगे तो बेटर रहेगा, बिकॉज उसके अलावा आप बाकी कुछ मत सिखाएं, मतलब दवाइयां ना बनाएं, प्रोडक्ट्स ना बनाएं, क्योंकि हमको नहीं है जरूरत उनकी। लेकिन एक और चीज है, और ये ऐसी खतरनाक सी चीज है, आयुर्वेदिक हुक्का, और ऐसे ऐसे नाम भी मत रखिए ताकि लोगों को लगे हम गलत चीज कर रहे हैं लेकिन अच्छे तरीके से। ना, ऐसा नहीं लगना चाहिए, बिकॉज स्मोकिंग इज बैड, इट इज बैड इरिस्पेक्टिव ऑफ इंग्रेडिएंट्स। जी हाँ, इसी के साथ यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, और इसी के साथ बात कर लेते हैं रोबोटिक हाइलाइट्स की, जो कि अभी कुछ दिन में हुआ। जी हाँ, सो दो वीडियोस जो हैं वो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही हैं इंटरनेट पर। उसमें से एक वीडियो है एक व्यक्ति की जो कि अपने रोबोट को कमांड करने की कोशिश कर रहा है एक रिमोट कंट्रोल से, और वो जो रोबोट है वो एक टाइकोंडो करने वाला रोबोट है। मतलब वो कराटे करता है, वो टाइकोंडो करता है। लेकिन हाईलाइट जो है वो वीडियो की, वो ये नहीं है कि वो टाइकोंडो कर रहा है। हाईलाइट ये है कि वो जो बंदा है जो अपने रोबोट को कमांड देने की कोशिश कर रहा है, वो रोबोट जो है वो एकदम से उसी के साथ टाइकोंडो और कराटे करना शुरू कर देता है। मतलब वो एक ऐसी किक मारता है कि वो जो बंदा वो रोबोट का वो रिमोट कंट्रोल लेके बैठा होता है उसी को वो उसके हाथ से उछाल के कहीं और गिरा देता है। बंदा लिटरली अपनी धोती बचा के घूमता है। आप लोग बोलोगे कि धोती बचा के, कहाँ की वीडियो है ये? वेल, है तो ये चाइना की, लेकिन धोती मैं एज अ मेटाफर यूज कर रही हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स जब इंसान अपनी जान के लिए भागता है और उसने कुछ गड़बड़ कर दी होती है, खुद ही अपने लिए उसने एक ऐसी चीज क्रिएट कर ली होती है कि आ बैल मुझे अपने सींगों से मार। वेल, वैसे ही सिचुएशन थी। मतलब बंदा जिसने रोबोट बनाया कराटे जूडो और यू नो टाइकोंडो करने के लिए, वो रोबोट देखता है कि अच्छा तुमने मुझे बनाया है कराटे करने के लिए, चलो तुम्हारे ही साथ कर लेता हूँ अब कराटे। जी हाँ, तो बंदे ने उसी के साथ कराटे करने शुरू कर दिए। लिटरली वो बंदा अपनी धोती बचा के वहां से भागा है अपनी जान के लिए। वेल ऑफकोर्स उसके बाद वो उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था, पर वो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। तो मैं यही कहूंगी कि रोबोट्स जो हैं वो आप कितना भी उन्हें समझो कि वो आपकी कमांड्स फॉलो कर रहे हैं, मैं तो कहती हूँ कि अभी उन पर हंसो भी मत, क्योंकि वो याद रखने वाले हमारे चेहरे कौन उन पर हंस रहा था जब वो गड़बड़ कर रहे थे, बिकॉज हमारे से बदला भी ले सकते हैं वो। जी हाँ, इसी के साथ एक और हाईलाइट है जो कि अगेन बहुत ही जबरदस्त है, और वो रोबोट से रिलेटेड या एक और वीडियो है जो इंटरनेट पर वायरल हो रही है, मोस्ट प्रोबेबली आपने देखी होगी। वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, लेकिन पहले हम एक और गाना आपको यहां पर सुनाने वाले।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत प्ले करने का वक्त आ गया है। और ये फरमाइश आई है हमारी बहुत ही प्यारी लिस्नर अमला जी की तरफ से। गाने का नाम है तू जो हंस हंस के। जी हाँ, राजा भैया मूवी का ये गाना है, और राजा भैया मतलब गोविंदा की मूवी का गाना है। एंड यू नो व्हाट, देयर वाज अ टाइम गोविंदा यूज टू बी माई फेवरेट हीरो। जी हाँ, आई थिंक आई वॉज 7 or 8 बैक देन, जब मुझे गोविंदा इतने पसंद थे कि मुझे ऐसा लगता था कि वाह, मतलब इस दुनिया में कोई खूबसूरत हीरो है तो वो है गोविंदा, इस दुनिया में सबसे अदाओं वाला हीरो है तो वो है गोविंदा। जी हाँ, ऐसी फीलिंग मुझे आई है एक टाइम पे, ऑफ कोर्स नॉट एनीमोर, बट द थिंग इज कि गोविंदा की फैन फॉलोइंग जो है वो बहुत ही जबरदस्त रही है, खतरनाक रही है, और उनकी अदाएं भी बहुत खतरनाक रही है। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच हमेशा की तरह जबरदस्त और खूबसूरत फरमाइशें करने के लिए। अमला जी, आपकी फरमाइशें अच्छी होती हैं, प्यारी होती है, और ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम को। और ये रहा आपका ये गाना तू जो हंस हंस के, फ्रॉम द मूवी राजा भैया।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज एंड associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atanya, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
4: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
5: Hi, this is Amitabh Bachchan.
6: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
8: Hi, this is Salman Khan.
9: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
10: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
11: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
12: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
13: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
14: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
15: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
16: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
17: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
16: अच्छा, वो क्या?
17: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
16: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
17: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
18: सासों की माला पे सिमरूं मैं।
19: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस. फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिला थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिला. सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है. ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं. हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा. प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट. निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम. Tickets on sale now at premiertickets.co. Sponsorships, partnerships aur zyada jankari ke liye contact Prerna on 0430228009. Proudly sponsored by Aussies Migration and Education and powered by Swadesh Foods. Come for the music, stay for the purpose, leave inspired.
8: के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. तो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निपा के साथ. तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि कहां कहां पर रॉबर्ट्स अपना फूल बना रहे हैं. जी हां, नॉट फूल बट फूल, बिकॉज फूल तो हर होता है, फूल होता है वही जो इंसान नॉर्मली अपने आप को बनाते हैं, लेकिन आजकल रोबोट्स भी कर रहे हैं. जी हाँ, सो रोबोट्स जो हैं वो इंसानों की ग्रेटेस्ट क्रिएशंस में से एक हैं. जी हाँ, और आपको तो पता ही है कि इतने सारे रोबोट्स हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि एक बंदे ने बनाया है एक टाइकांडो, कराटे और जूडो करने वाला रोबोट, और वो रोबोट जो है वो नॉर्मली अपना काम करता होगा जैसे उसे बनाया गया है. लेकिन उस वीडियो में, और वो वीडियो किसी ने बनाई नहीं है, वो डैश कैम की, वो कैमरा की फोटो है जिसमें उसने कैप्चर जो है उस कैमरा ने किया कि वो व्यक्ति जो है वो अपने रोबोट को कुछ करने की कोशिश कर रहा था. वो झुका हुआ था उसके सामने और एकदम से रोबोट जो है वो अपना जूडो कराटे जो है वो उसके सामने दिखाना शुरू कर देता. उसके हाथ से उस रोबोट को किक, उस रिमोट को किक करता है और पता नहीं कौन सी दिशा में फेंक देता है. नाउ एक और रोबोट, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गई है और आपको तो पता ही है आजकल रोबोट जो है वो डांस भी कर रहे हैं. जी हाँ, कथक कर रहे हैं, हिप हॉप कर रहे हैं, और ये वाला जो रोबोट है वो जिसकी वीडियो वायरल हो रही है वो बैले डांस कर रहा था. जी हाँ, मतलब आप सोचिए, इंसान बैले डांसर इतने नहीं है लेकिन रोबोट जो है वो बैले डांसिंग भी कर रहे हैं. अब आलम तो ये हो गया है कि ऑलमोस्ट वो रोबोट जो है वो बहुत ही अच्छा कर रहा था, मतलब उसके जो मूव्स थे वो इतने स्मूथ थे कि किया ही कहां जाए. पर फिर उसको पता नहीं कहां से एक दौरा पड़ता है और वो ऐसे ढड़ ढड़ ढड़ करके गिर जाता है. जी हाँ, सारे के सारे लोग जो है वो वहां पर देख रहे होते हैं और हंसता कोई नहीं है. जी हाँ, वहां पे लोग जो है जो उसको कमांड दे रहे होते हैं वो ऐसे करके अपने सर को पकड़ लेते हैं. अरे यार, फिर से गड़बड़ कर दी इसने, अजब माइला, इसको कोई समझाए, ऐसे नहीं करना, ऐसा नहीं करना. अरे इंसान नहीं समझते समझाने पे, तुम रोबोट को कैसे समझा सकते हो. जी हाँ, ऑफकोर्स वो उसको समझाएंगे नहीं, उसकी प्रोग्रामिंग में चेंजेस करेंगे. बट यू नो वॉट, मैं ये सोच रही थी कि रोबोट्स को अगर आपको कोई कमांड देनी है, अगर आपको रोबोट से कुछ कराना है और वो कुछ गड़बड़ करते हैं, तो ऑल यू नीड टू डू इज चेंज द प्रोग्रामिंग. बट इट्स नॉट, दैट्स नॉट द केस विद ह्यूमंस. मतलब ह्यूमंस अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो वो करते ही रहेंगे, क्योंकि आप उनको समझाओ तो उनको समझ नहीं आता है. आप उनको कमांड भी नहीं कर सकते, आप उनकी प्रोग्रामिंग भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोग्रामिंग तो भगवान ने की है ना उनकी. सो द थिंग इज कि यहां पर रोबोट जो है वो बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं. लेकिन एक और चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, जो मैंने पहले भी बोली, कि वो हमें देख रहे हैं, कि हम उन पे हंस रहे हैं. जब भी वो अपना फूल बनाते हैं और हम उन पे हंसते हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो हमारे चेहरे याद रख रहे हैं और बाद में चुन चुन के बदला लेंगे हमसे. जी हाँ, सो बैले डांस करता हुआ रोबोट जो है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, क्योंकि इस दुनिया में ऐसे अजूबे अगर आप नहीं देखेंगे तो आप क्या देखेंगे. जी हाँ, यहां पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन जबरदस्त होने वाला है.

जी दोस्तों, और इसी के साथ अब जरा बात कर लेते हैं खबरों की। हाँ, खबरों की दुनिया में एंट्री करने का वक्त आ गया है। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है खबरों में, वॉर फ्रंट पे क्या हो रहा है, सब जानेंगे। सबसे पहले इजरायली सेना का दावा, अबू असामा समेत हमास के 5 सदस्य मारे गए। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने सोमवार को गाजा में एक सैन्य अभियान में हमास के 5 सदस्यों को मार दिया है, जिनमें एक कमांडर भी शामिल है। द टाइम्स ऑफ इजरायल की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना और आंतरिक सुरक्षा एजेंसी शिन बेट ने हाल के हफ्तों में गाजा में अपनी आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों को तेज किया है। इजरायली सेना के निशाने पर हमास के सैन्य कमांडर अहमद अल बच थे, जिन्हें अबू ओसामा के नाम से भी जाना जाता था। हमास से जुड़े समाचार सूत्रों ने भी उनकी मौत की पुष्टि की है। ईरान की फारस न्यूज एजेंसी की ने सोमवार रात गाजा अल आन के हवाले से बताया कि अहमद अल बच हमास की सशस्त्र यूनिट इज अल दीन अल कसासम ब्रिगेड के कमांडर थे। रिपोर्ट के मुताबिक एक इजरायली हमले में उनकी मौत हुई। अल जजीरा ने भी उनकी मौत की जानकारी देते हुए बताया कि अहमद अल बच को गाजा सिटी के उत्तर में अल सफ्तावी स्ट्रीट पर एक कार को निशाना बनाकर किए गए हवाई हमले में मारा गया। इसका इलाका जबालिया के पश्चिम में स्थित है।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
2: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
1: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
2: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
3: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
4: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
3: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
4: अरे, ओम्स ऑर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
3: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
4: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
3: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
4: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470-631-801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्स ऑर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
5: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
6: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
7: अरे, इसमें कंफ्यूजन क्या? प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
6: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
7: एट शॉप 9B सनीबैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनीबैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स, कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM, शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, यहां पर खबरों की बात हो रही है और हूतियों का दावा, सऊदी अरब ने यमन पर 24 घंटे में किए 54 हवाई हमले। यानी कि हूती विद्रोहियों ने सोमवार को दावा किया है कि सऊदी अरब ने पिछले 24 यानी कि 24 आवर्स में यमन के अलग अलग इलाकों में 54 हवाई हमले किए हैं। यह दावा ऐसे समय सामने आया है जब हूती लाल सागर के तटीय इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हूती सैन्य प्रवक्ता साया सरी ने एक बयान में कहा कि सऊदी की एयरफोर्स ने F-15 और टाइफून लड़ाकू विमानों के जरिए यमन के क्षेत्रों को निशाना बनाया। उनके मुताबिक इन हवाई हमलों में ताइज, लहज, जौफ, मारिव और हुदेइदा के इलाके शामिल हैं। बीबीसी फारसी के मुताबिक हूतियों ने सोमवार को यह दावा भी किया है कि उन्होंने सऊदी अरब में सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। हूतियों के मुताबिक हाल के दिनों में उन्होंने लाल सागर के तट पर बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर कंट्रोल हासिल किया है। गौरतलब है कि इस समुद्री मार्ग का रणनीतिक महत्व हाल ही में बढ़ गया था क्योंकि अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से ही प्रभावित हो गया था।

केस तो मैं यही कहूंगी कि अगर ऐसा केस है पिया बोल नहीं रहा है तो आप भी मत भूलिए, आप बोलिए कि मोरा पिया मुझसे बोलत ना ही सो हम भी उनसे। सीधी सी बात है, कोई आप बात नहीं कर रहा है तो आप क्यों बात करना चाहोगे। खुद से प्यार, दुनिया दैट इज द फर्स्ट लेसन वी शुड लर्न। लेकिन हमको कुछ और ही सिखाया जाता है, हमको सिखाया जाता है हमको सबसे प्यार करना, लेकिन खुद से नहीं करना है, खुद से करना है। जी हाँ, प्यार खुद से होना जरूरी है, तभी दुनिया भी अच्छी लगती है और दुनिया से भी जस्टिस कर पाता है इंसान। चलिए इसी के साथ दोस्त, यहाँ पर खबरों की तो बात हो ही रही थी, लेकिन यहाँ पर खबरों की दुनिया में और भी बहुत कुछ चल रहा है, और खबरों के साथ दुनिया में बेसिकली बहुत कुछ चल रहा है, क्योंकि यूके के लिए और मैं कहूंगी कि ब्रिटिश रॉयल्टी के लिए कोई अच्छा वक्त नहीं है, क्योंकि वहां से तीन बहुत ही बड़े बड़े रीजन जो है वो अपने आप को अलग करने की सोच रहे हैं, और उन्होंने इस चीज का ऐलान भी कर And I'm talking about Scotland, Wales and Northern Ireland leaders. जी हाँ, so Scotland, Wales and Northern Ireland leaders to push for independence from UK. जी हाँ, you heard me right. और ये जो है वो बहुत ही जबरदस्त चीज है। You know what? I am not feeling anything for UK right now. मतलब I am not feeling anything for British Kingdom, because Let's be real, हम सब उनकी वजह से बहुत कुछ सह चुके हैं, ठीक है, और उन्होंने जो कारनामा किए हैं ना इस दुनिया में, मतलब वो कितना भी शुगर कोट करने की कोशिश करे, कितना भी अच्छा बिहेव करने की कोशिश करे, उनकी जो अट्रोसिटीज हैं, नो बडी कैन फॉरगेट दैट। जी हाँ, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स वो भुला नहीं सकते और हमें भी नहीं भुलानी चाहिए। हाँ, ऑफकोर्स हमें अपनी जिंदगी में, अपने मन में हेट्रेड नहीं रखना चाहिए, बिकॉज दैट इज बैड फॉर आर हेल्थ, बट द थिंग इज कि नाउ दैट पीपल आर थिंकिंग एंड दीज रीजन आर थिंकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, I am feeling very happy about them. जी हाँ, so उन्होंने basically अपना एक बहुत ही जबरदस्त सा जो है एक document sign किया है, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि हमको भाई, हमको अलग होना है, हमको UK के साथ नहीं जाना। Northern Ireland कह रहा है कि हमको तो अलग होके Ireland के साथ जाना है, और बाकी के जो है दो, यानी कि बड़े बड़े region, Scotland and Wales, वो कह रहे हैं कि हमको अलग country बनना है। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसे कैसे चलेगा, I mean हमारा तो क्या ही है, लेकिन इस वक्त King Charles को नींद आ रही है या नहीं आ रही है मुझे नहीं पता, ब्रिटेन को नींद आ रही है नहीं आ रही है मुझे नहीं पता। जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है कुछ वक्त बाद ना सिर्फ लंदन ही रह जाएगा, बाकी और सब कुछ गायब हो जाएगा, क्योंकि मैं कहती हूं कि कर्मा इज रियल। मतलब ऑल्दो समटाइम्स इवन आई थिंक कि कर्मा इज नॉट रियल, बट समटाइम्स आई थिंक कि थोड़ा डिले हो जाता है, बट जरूर जो है वो सर्व करता है वो जस्टिस। एंड आई थिंक अब जो है वो लोगों को ऐसा सोचने पे वो मजबूर हो गए हैं कि ठीक है भाई, इट्स ऑल अबाउट डेमोक्रेसी, व्हाई शुड वी स्टिल गो फॉर दिस यू नो अजीबो गरीब सिचुएशन। आई एम लाइक, इट्स नॉट दैट वी आर लिविंग इन लाइक 18th और 17th सेंचुरी, जहां पे जो ब्रिटेन कहेगा वही होगा। अब हम अपने आप को फ्री डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड दैट्स व्हाट दे हैव ट्राइड टू डू। अब इसमें वो कितने कामयाब होते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कह तो दिया है कि हमको चाहिए भाई आजादी, हमने तो सीधा सीधा कह दिया है कि हम आजाद होकर रहेंगे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्स, स्कॉटलैंड एंड नॉर्दर्न आइलैंड्स। जी हाँ, सो लेट्स सी एंड लेट्स प्रे कि उनको आजादी मिल ही जाए, बिकॉज दे वॉन्टेड टू बी फ्री फॉर सो लॉन्ग। मतलब इतनी सारी कंट्रीज है, उनको भी इंडिपेंडेंस मिले वो काफी वक्त हो गया, इस एरा में भी लोग इंडिपेंडेंट नहीं है, दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। मतलब क्या ही चीज है ये, राइट? सो या, गुड लक टू स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड एंड वेल्स, वी आर विद यू। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट, जरूर मुझे बताइएगा। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ

0: पर या फिर ईमेल करें singjerry@gmail.com पर।
1: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
3: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
4: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे, रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: और चाइना जो है वो 2050 में रह रहा है और इसमें कोई दौर आए बचा ही नहीं है. मतलब अब हमें इस चीज को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. एंड व्हाई एम आई सेइंग इट, वेल इतने सारे रोबोट्स एआई टेक्निक में तो वो आगे है ही. उनका इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है. ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स वो बनाते हैं, ऐसा ऐसा मतलब आर्किटेक्चर है उनका कि क्या ही कहा जाए. यहाँ पर उन्होंने एक चीज बनाई है जिसका नाम है हस्बैंड स्टोरेज. आपने सही सुना. तो चाइना के मॉल में है हस्बैंड स्टोरेज पोर्ट फॉर गेमिंग वाइल वाइब्स गो शॉप. ये हस्बैंड स्टोरेज पोर्ट्स जो हैं वो एक ग्लास पोर्ट की तरह बने हुए हैं और ये चाइना के मॉल्स में, और वहां पर जब भी जो वाइफ्स हैं जो शॉपिंग करने जाती हैं अपने हस्बैंड्स के साथ, तो वाइफ जो है वो आराम से शॉपिंग कर सके, उनके हस्बैंड उन्हें रश ना करे और हस्बैंड भी जो है वो चिल रहे, एकदम मजे में रहे, तो भी परेशानी नहीं हो कि ओ मेरी बीवी इतना वक्त क्यों लगा रही है शॉपिंग में. इस सारी चीजों का ख्याल रखने के लिए उन्होंने ये पोर्ट बना दिया. जी हाँ, सो बेसिकली एक ग्लास पोर्ट है, उसमें बैठ के जो हस्बैंड्स हैं वो मजे से गेम्स खेल सकते हैं और बड़े ही मजे से चिल कर सकते हैं. वाइफ करेंगी शॉपिंग, वहां भी कोई रश करने की

इसलिए नहीं है कि जल्दी करो जल्दी हमें देर हो रही है, मैं बोर हो रहा हूँ, मैं थक गया हूँ, क्योंकि बंदे यानी कि हस्बैंड जो है वो मजे से गेम खेल रहे हैं और गेमते हुए बुरा नहीं लगता। जी हाँ, ये रियलिटी है, ये यूनिवर्स का फैक्ट है। सो चाइना वालों ने ये करके दिखा दिया एंड आई वाज लाइक कि या आई थिंक वी नीड दीज काइंड ऑफ पॉड्स एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, लाइक इन एवरी कंट्री, बिकॉज ये दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है कि जब भी हस्बैंड्स को बोलो कि आपको वाइफ्स को शॉपिंग कराने जाना है, उनको सबसे ज्यादा बुरा इसलिए नहीं लगता कि उनकी जेब ढीली होने वाली है, उनको बुरा इसलिए लगता है कि ओह माय गॉड, मेरी बीवी तो शॉपिंग करेगी लेकिन मेरा क्या होगा, ये मुझे थका देगी, ये मार देगी, ये मुझे बोर कर देगी। लेकिन अब यहां पर ऐसा हो ही नहीं रहा है, सो बीवियां मजे से खरीदारी कर सकती हैं, शॉपिंग कर सकती हैं, पैसे उड़ा सकती हैं, और हस्बैंड्स को वो पैसे उड़ते हुए दर्द भी नहीं होगा क्योंकि अपेरेंटली दे आर ऑल्सो चिलिंग एट द सेम टाइम इन अ वेरी गुड पॉड, दे कैन सिट देयर, दे कैन प्ले गेम्स देयर एंड लिटरली दे कैन चिल देयर। सो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है कि हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा कुछ होना चाहिए? प्लीज प्लीज प्लीज मुझे बताइए। या एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त

जी दोस्तों, और इसी के साथ कल ही की बात है, मैं सोशल मीडिया चला रही थी और मेरी नजरों के सामने एक चीज आती है, मतलब एक मीम आता है बेसिकली, जिसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि बात तो सही है, मतलब कैसी बातें बनाते हैं लोग, क्या ही बातें कर दी हैं लोगों ने, राइट? मतलब इंसान कुछ भी बातें बनाते रहते हैं जिनका लॉजिक भी नहीं बनता. सो, वहां पर लिखा हुआ था कुछ बहुत ही दिलचस्प जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. वहां पर लिखा हुआ था कि मैं अपनी गलती से नहीं सीखता. जी हाँ, मैं अपनी गलती से नहीं सीखता क्योंकि वो खुद गलती है, मुझे क्या सिखाएगी. जी हाँ, एंड आई वाज लाइक या दैट्स ट्रू. मतलब अगर आप उसको मोल्ड करके, जैसे पीछे से मुड़ के जो दूसरी गली में जाके आप उसका मतलब निकाल के उसे सीख की तरह लेते हो, अगर आप वो ना करो, सीधे जाओ, सीधा गली में घुस जाओ, तो आपको लगेगा पता कि हाँ, मतलब सही बात है, मतलब मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं. भाई ये क्या बात बनी, गलतियों से कोई कैसे सीख सकता है? जब गलती गलती है तो वो आपको कैसे सिखा सकती है? एंड आई वाज लाइक या That's true. आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा. इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना ऑफिशियली ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का आप सबके लिए, जवानी जाने मन हसी.

जवान जान मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जो निसार हो गया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप मनोज कुमार की मूवीज के अगर फैन रहे हो तो आपने उनकी जो देश प्रेम की मूवियां हैं वो भी जरूर देखी होंगी। क्या आपने उनकी शहीद मूवी देखी है? जी हाँ। अब शहीद मूवी में उन्होंने बहुत ही गजब का कैरेक्टर प्ले किया है, लेकिन लेकिन लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो शायद आपको बताना हो और वही हम आज आपको बताने वाले हैं। आपने सुखदेव के कैरेक्टर में प्रेम चोपड़ा को उस मूवी में देखा, लेकिन क्या आपको पता है कि मनोज कुमार की पहली चॉइस सुखदेव के कैरेक्टर के लिए प्रेम चोपड़ा नहीं बल्कि राजेश खन्ना थे? जी हाँ, आप राजेश खन्ना को ही चूज किया गया था और लेकिन वो वही वक्त था जब राजेश खन्ना नए नए मूवीज में आने की कोशिश कर रहे थे और एक बहुत ही अच्छा कंपटीशन, टैलेंट हंट कंपटीशन जीत कर वो निकले थे और उस कंपटीशन को जज करने के लिए एक पूरा का पूरा प्रोड्यूसर्स का पैनल बैठा हुआ था। जब उन्हें ये मूवी ऑफर हुई तो उन्हीं प्रोड्यूसर्स के पैनल में से कुछ प्रोड्यूसर्स ने राजेश खन्ना को यह कहा कि देखो, ये जो मूवी है वो बहुत ही ग्रे शेड से भरी है और अगर तुम हीरो बनना चाहते हो तो पहली ही मूवी ग्रे शेड वाली मत करना बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो इसीलिए उन्होंने इस मूवी को करने के लिए मना कर दिया। मतलब प्रेम चोपड़ा की किस्मत उस मूवी से बन गई और राजेश खन्ना की किस्मत भी ऐसा नहीं है कि नहीं बनी, मतलब ही वॉज द बिगेस्ट एंड द मतलब सबसे बड़े हीरो ऑफ दैट टाइम। बट द थिंग इज कि कुछ चीजों को मिलने में थोड़ी सी देरी हो गई, लेकिन वहां पर प्रेम चोपड़ा को ये पिक्चर ऑफर हुई। प्रेम चोपड़ा तब टाइम्स ऑफ इंडिया की नौकरी किया करते थे और जब उन्हें मनोज कुमार ने ये मूवी ऑफर की, सुखदेव का कैरेक्टर ऑफर किया, तो ही वॉज लाइक की ऑफकोर्स आई एम गोना डू इट, आई एम गोना डू इट, एंड दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मैं प्ले करने वाली हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है, ये है एक रिकमेंडेशन, यानी कि रिकमेंडेड सॉन्ग, और ये रिकमेंडेशन आया है हमारे बहुत बहुत बहुत ही खास लिसनर। जी हाँ, और सिर्फ लिसनर कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये रिकमेंडेशन आया है हमारे बॉस मिस्टर जतिश पूरन जी की तरफ से। उन्होंने जिस गाने को रेकमेंड किया है वो है तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। जी हाँ, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है। आगे की बात हम करने देते हैं रफी साहब और लता जी को, क्योंकि ये गाना जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू सो मच सर, हमेशा आपकी जो रेकमेंडेड सॉन्ग होते हैं ना वो बहुत ही जबरदस्त होते हैं। सो ऐसे ही अपने रिकमेंडेशन का सिलसिला जो है वो जारी रखिए, बिकॉज वी लव दैट। एंड मेरे लिसनर्स, अगर आपके पास भी ये कोई गाना जो है पुराना और आप करना चाहते हैं फरमाइश, देन दिस इज द परफेक्ट टाइम। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जी हाँ, ये गाना आप सबके लिए।

मैं इतना कहना चाहूंगी कि गाना जो है वो बहुत ही जबरदस्त है और बहुत ज्यादा टेम्पटिंग वाला रूम, मतलब रफी साहब और लता जी की गायकी में आपने यहाँ पर कुछ डिफरेंट स्पॉट किया, कुछ आपने डिफरेंट जो है वो आपकी नजर में आया। जी हाँ, आप जब इस गाने को सुनोगे तो मतलब जो वाइब है कि जो हीरो और हीरोइन बड़े ही मजे से जो है वो एक गाड़ी में जा रहे हैं, सबसे बात वहां से होती है, और फिर जो है वो ऑफकोर्स एक रोमांटिक राइड, तो उसको कैसे रोमांटिक गिरी के साथ वहां पर निकालना है, मतलब वो आवाज जो कि इस सीन को पिक्चराइज करने के लिए इस्तेमाल होगी वो कैसे निकालनी है। रफी साहब ने कहते हैं तुम जो मिल गए हो, जी हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना सिंग, सो डरिएगा मत, मैं नहीं गाने वाली हूँ। जी हाँ, इससे पहले आप भाग जाओ, सब कुछ छोड़ के, नीविया गा रही है, भागो जल्दी भागो, ऐसा नहीं कीजिएगा क्योंकि मैं नहीं गा रही हूँ। मतलब थिंग इज कि यहाँ पर ये जो गाना है वो सच में क्या, मतलब वो जो टेम्पटेशन वाला रोमांटिक वाला जो गाना है, मतलब एक रोमांटिक गाने दूसरे भी है, मतलब आपको पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन ये जो टेम्पटिंग रोमांटिक है, मतलब कैसे ये वाला जो विजन है कैसे लेकर आ देते। रफी साहब ने क्या गाया, लता जी ने क्या गाया, भाई क्या कहूं मैं। जी हाँ, सो इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और ये है ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। क्या बात है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स, एंड नॉट जस्ट माइन बट मेरे बहुत सारे लिसनर्स का बहुत ही पसंदीदा गाना जो है ये रहा है, किशोर दा के कल्ट फेवरेट्स में से एक है, और उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से गाया हुआ है। जी हाँ, आरडी बर्मन का म्यूजिक है, और ऑफकोर्स आरडी बर्मन यानी कि पंचमदा। और एक चीज हमेशा आपने नजर मतलब आपने देखी होगी कि आरडी बर्मन यानी कि पंचमदा और किशोर दा ने दुनिया के सबसे बेस्ट गाने बनाए हैं, मतलब ये जो जोड़ी थी वो इतनी ज्यादा लेजेंडरी थी। इनफैक्ट पंचमदा यानी कि आरडी बर्मन ने इतना भी कहा है कि ये इंसान ने मेरे लिए ऐसी चीजें की थी जिसका क्रेडिट कभी इसने लिया ही नहीं। जी हाँ, उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छे सिंगर तो किशोरदा रही ही हैं, एक्टर रही हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि म्यूजिक इतना खूबसूरत वो बनाते थे। उन्होंने लिटरली मेरे एक जिंदगी के पल में मेरे इतना साथ दिया था, जब मैं किसी मूवी पे काम कर रहा था, किसी गाने पे काम कर रहा था, उन्हें ये गाना गाना था लेकिन मैं उस धुन को बना नहीं पा रहा था, तो उन्होंने आके वो धुन बनाई, उस पे गाना भी गाया और कभी क्रेडिट भी नहीं लिया। मतलब आज भी पेपर पे आरडी बर्मन ने उस गाने को बनाया है, उसकी धुन बनाई है और किशोर दा ने उसे गाया है, लेकिन आरडी बर्मन ने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि ये गाने की धुन जिसपे कि दुनिया मानती है कि मैंने बनाई है वो किशोर दा ने खुद बनाई थी। तो लोग जानते हैं, दुनिया जानती है कि किशोर दा बहुत ही अच्छे एक्टर है, बहुत ही अच्छे सिंगर रहे हैं और क्या क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन वो एक बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक कंपोजर थे, डायरेक्टर थे, नोबडी नोज दैट। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए जो कि है मेरे दिल के चैन।

क्या बात है, क्या बात है और क्या बात है दोस्तों। इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है, जा रहे हैं हम। आपने देख ही लिया होगा कि घड़ी कह रही है कि निवेश शर्मा अब जाओ। जहां हाँ, सच में कह रहे हैं हम, जाओ जाओ। ठीक है, तो आप कह रहे हो मैं जाऊं, तो मैं जाती हूँ, लेकिन जाऊंगी, आऊंगी जरूर कल। जी हाँ, कल आऊंगी, सेम टाइम सेम जगह आपको मिलने वाली हूँ। यानी कि आपको रेडियो ब्रिजवानी ट्यून करना है और 3 बजे करना है, क्योंकि मैं आपको तब मिलने वाली हूँ। लेकिन आपके अलावा भी ट्यून कर सकते हो, क्योंकि रेडियो ब्रिजवानी पे हम आपके एंटरटेनमेंट का पूरा पूरा ख्याल रखते हैं। एंड इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, खाते रहिए और सुनते रहिए रेडियो ब्रिजवानी। बाय द वे, गाते तभी रहिए अगर आप आज निवेदा की तरह नहीं गाते, क्योंकि अगर आप मेरी तरह गाते हैं फिर वो गाते वाला पार्ट हटा लीजिए, बाकी सब कुछ कर लीजिएगा। इसी के साथ बाय बाय, सी यू टाटा। ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए, अगेन अ कल्ट फेवरेट, मिलो ना तुम तो हम घबराएं।

0: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
1: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
2: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
1: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
2: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड सनी बैंक हिल्स क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365 दैट्स 3273-7365 और ईमेल prince jewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।

ना बदला में, ना बदला।

पहले था कबूतर अब है ट्विटर, पहले थी बुक अब है फेसबुक, पहले था टेलीग्राम अब है इंस्टाग्राम, पहले थी जादू की जापी अब है वीडियो कॉल पे पप्पी। यही सोचकर पिछला और अगला

0: Pourquoi?
1: Bonne année!

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर

पावर का प्रॉमिस है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वड डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

मैं पागल हूँ और बहुत पागल, मैं पागल हूँ और बहुत पागल, पर ये भी बात है कि दिल सच्चा है। छीन तो लेता तुझको सरेआम में, पर मसला ये कि शौहर तेरा आदमी अच्छा है।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन के कुछ खास खबरों के साथ। कॉमन बैंक रिपोर्ट, जी हां, ऑस्ट्रेलिया अर्थव्यवस्था में क्वींसलैंड बना नंबर वन। जी हां, कॉमनवेल्थ बैंक की ताजा स्टेट ऑफ द स्टेट्स रिपोर्ट के अनुसार क्वींसलैंड ने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का पहला स्थान हासिल कर लिया है। वहीं ब्रिस्बेन रेजिडेंशियल केयर होम घटना पर राज्य स्तर की जांच। जी हां, ब्रिस्बेन स्थित एक केयर होम में नाबालिग लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के बाद क्वींसलैंड सरकार ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। वहीं माइनिंग टाउन ग्लेंडन के लिए संसद ने नया विधेयक पेश किया। क्वींसलैंड सरकार ने संसद में नया संशोधन विधेयक पेश किया है। इसके तहत सेंट्रल क्वींसलैंड के ग्लेंडन टाउनशिप में माइनिंग वर्कर्स के आवास नियमों में ढील दी गई है। इसके साथ इमिग्रेशन पॉलिसी और वर्कफोर्स को लेकर सड़कों और संसद में बहस। जी हां, ऑस्ट्रेलिया में वर्कफोर्स की कमी और माइग्रेशन में कटौती के प्रस्ताव को लेकर बहस छिड़ गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर वीजा नियमों में ज्यादा सख्ती की गई तो ब्रिस्बेन और क्षेत्रीय क्वींसलैंड में कंस्ट्रक्शन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को कर्मचारियों की भारी किल्लत झेलनी पड़ सकती है। वहीं NRLW फाइल्स वेस्ट टाइगर्स का पहला ऐतिहासिक मुकाबला। नेशनल रग्बी लीग विमेंस में इस वीकेंड ब्रिस्बेन और आसपास के खेल प्रेमियों के लिए बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वेस्ट टाइगर्स की टीम अपने पहले फाइनल्स में कैनबरा रेडर्स का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं ब्रिस्बेन वेदर और ट्रैफिक अपडेट की अगर बात की जाए तो क्वींसलैंड वेदर ब्यूरो के अनुसार ब्रिस्बेन और आसपास के इलाकों में सुबह के हल्के कोहरे के बाद दिनभर धूप खिली रही और मौसम सुहावना रहा। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट ने शहर के मुख्य मार्ग पर बैरन रिवर ब्रिज पर 42.5 टन का लोड लिमिट लगाया है, इसलिए भारी वाहनों को डायवर्ट भी किया गया। इसके साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले एयर इंडिया को मिला शो कॉज नोटिस। जी हां, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और इमिग्रेशन को लेकर बड़ी चूक सामने आई है। 3 इटालियन यात्री बिना इमिग्रेशन प्रोसेस पूरे किए दिल्ली से म्यूनिक की फ्लाइट में सवार हो गए। वहीं कोटा निकाय चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी से रीपोलिंग का ऐलान। वहीं राजस्थान के कोटा नगर निगम चुनाव के नतीजों के दौरान वार्ड 87 समेत कुछ वार्डों में ईवीएम मशीनों में तकनीकी खराबी की शिकायतें मिली हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन और पारदर्शिता की मांग को देखते हुए चुनाव आयोग ने संबंधित वार्डों में परिणाम रोक दिए हैं। वहीं शेयर बाजार में जोरदार उछाल, सेंसेक्स 587 अंक चढ़ा। भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिली। आईटी और ऑटो स्टॉक्स में आई मजबूत खरीदारी की बदौलत बीएसई सेंसेक्स 587 अंक उछलकर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 23,500 के स्तर के पार चला गया। वहीं ऑनलाइन चाइल्ड सेफ्टी पर केंद्र की सख्ती, मेटा का नया कदम। बच्चों की डिजिटल सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार के कड़े रुख के बाद टेक दिग्गज मेटा ने भारत सरकार के साथ नया करार किया है। अब मेटा अपने प्लेटफॉर्म फेसबुक इंस्टाग्राम पर चाइल्ड अब्यूज या किसी भी संदिग्ध ऑनलाइन कंटेंट की रिपोर्ट सीधे सुरक्षा एजेंसियों को देगा। वहीं हैदराबाद मेट्रो फेज 2 विस्तार के लिए 38,595 करोड़ रुपए का प्लान। के साथ अब जरा चलते हैं सीधा अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले सऊदी अरब की ऑयल पाइपलाइन पर ड्रोन हमला, ग्लोबल सप्लाई पर असर। सऊदी अरब की मुख्य ईस्ट वेस्ट ऑयल पाइपलाइन पर बड़ा ड्रोन हमला हुआ है, जिससे पाइपलाइन को भारी नुकसान पहुंचा है। अधिकारियों का कहना है कि इसके मेंटेनेंस और रिपेयरिंग में लगभग 3 से 5 हफ्ते का समय लग सकता है। वहीं फ्रांस में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन का प्रस्ताव। डिजिटल दुनिया से बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रांस सरकार ने एक नया सख्त कानून प्रस्तावित किया है। इसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की योजना है। वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला की चेतावनी। जी हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने ग्लोबल एआई गवर्नेंस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियंत्रण केवल कुछ चुनिंदा बड़ी कंपनियों के हाथों में नहीं होना चाहिए। इसके साथ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मेल इन बैलेट पर राहत। जी हाँ, अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए देश की डाक सेवा को बैलेट पेपर्स रोकने से मना कर दिया है। इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया में आम नागरिकों के अधिकारों और मेल इन वोटिंग की पारदर्शिता के पक्ष में एक बड़ी जीत के रूप में देखा जा रहा है। वहीं नेपाल के पावर क्राइसिस में भारत की मदद, 654 मेगावाट बिजली एक्सपोर्ट को मंजूरी। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के कारण उनके कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ठप हो गए हैं। इस ऊर्जा संकट से उभारने के लिए भारत सरकार ने नेपाल को 654 मेगावाट अतिरिक्त बिजली सप्लाई करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ग्लोबल मार्केट में फिर बड़ी महंगाई की चिंता, कच्चे तेल के बढ़ते दामों और सप्लाई चेन में आई रुकावटों के कारण आज एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ अब जरा चलते हैं सीधा खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले भारत बनाम अफगानिस्तान सेकंड T20 आए दिल्ली में। दिल्ली में सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी टीम इंडिया। सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज का दूसरा T20 मुकाबला खेल रही है। वहीं वरुण चक्रवर्ती वो चोट के कारण अफगानिस्तान T20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता US ओपन का खिताब। जर्मनी के स्टार टर्निस खिलाड़ी अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने US ओपन के फाइनल मुकाबले में घरेलू पसंदीदा बेन शेल्टन को हराकर अपना न्यूयॉर्क टाइटल जीत लिया है। वहीं एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत आएगी पाकिस्तानी हॉकी टीम। इसके साथ MCG में पहली बार खोला गया NFL का नया ऐतिहासिक मुकाबला। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड MCG में पहली बार अमेरिकन फुटबॉल यानी NFL का रेगुलर सीजन मैच आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक मैच को देखने के लिए 80,000 से ज्यादा दर्शक स्टेडियम में पहुंचे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दित्ती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। नवी क्वींसलैंड सरकार 4,000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु आज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका पता बताना।
3: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is दीपिका पादुकोण. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
10: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शांडिलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शांडिलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
3: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
2: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
4: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
4: बिल्कुल, ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्सॉर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्सॉर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
5: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
6: तो ओम्सॉर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
5: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
6: अरे, ओम्सॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
5: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
6: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
5: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
6: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448381360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470631801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओम्सॉर्ग, केयरिंग विद डिग्निटी।
7: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर, द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
8: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
9: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
8: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
9: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438, 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660, 0415-952-660।

0: नहीं, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन, जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां, इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च वी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Anuj, koi achha sa lawyer suggest karo na. Aisa jo meri sari baat dhang se sune, samjhe, और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
3: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
2: अरे वाह, इनका

0: पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटर्नी, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Madhvi from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
7: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.
9: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है. एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है. ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है. यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है. लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है. यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: सांसों की माला पे समरू में।
3: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम। टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्विदीज फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार, हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
3: तो ओम्स ऑर्ग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों को।

आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हुए जी तुहाडे अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिसोनी 101.1 एम ते जी आर चे संदेश शौलक दे नाल सी बन चुके हो। ढेर सारियां गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहणा जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां नूं असीं लगाउणा पंजाबी गीतां दा तड़का। तां तुसी की गाणा है, तुसी जुड़ना है साडे नाल, तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो ब्रिसोनी 101 एम साडा फेसबुक पेज है, ते brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है। खैर तुहानूं पता ही है, पर फिर भी मैं हर रोज दस दिनी हुनी हां ताकि तुसी किते भुल ना जाओ जरा भी, ते जुड़दे रहो साडे नाल। रखो अपनी फरमाइशां, करो साडे नाल दिल दीआं गल्लां, ते मैं तां गाणे तुहानूं सुणाउंदी रहूंगी ना। जरूर जरूर जरूर सुणाउंगी। तां चलो फिर तुसी इन गीतां नूं इंजॉय करो, मैं हुणे वापस आई।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com.
2: Family business, built on trust.
3: बिल्कुल मजा नहीं आया।
4: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
3: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
4: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
3: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
4: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
5: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
6: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसानी 107.1 FM ते जी आर जे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो तो सब तो पहला गल करते हैं बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की। तो देखो राजेश खन्ना का असल नाम ना जतिन खन्ना सीगा। राजेश खन्ना दे चेतन आनंद की फिल्म आखिरी खत नाल उन्होंने बॉलीवुड के विच डेब्यू किया सीगा। उन्होंने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना फिल्म नाल रातों रात स्टारडम हासिल किया सीगा। तो राजेश खन्ना ने ना 1969 यानी कि 1969 तो लैके 1974 यानी कि 1974 तक 17 तो ज्यादा हिट फिल्मा दित्तियां सी। उन्होंने कटी पतंग इतफाक डोली बंधन दो रास्ते खामोशी ते द ट्रेन सच्चा झूठा सफर आनंद आन मिलो सजना अंदाज मर्यादा हाथी मेरे साथ ही महबूब ते छोटी भाभी वर्गियां हिट फिल्मा दित्तियां सी। 1974 तो उन्हां दा डाउनफॉल शुरू होया सी। फिर उन्होंने 1980 के दहाके विच वापसी की। राजेश खन्ना ने डिंपल कपाड़िया 1973 विच ब्याह किया सी ते ब्याह तो बाद उन्होंने दो बेटियां ट्विंकल खन्ना ते रिंकी खन्ना होईयां सी। इन्हां बारे दसना है थानू इनी ये दसना जरूरी हुंदा ना छोटियां छोटियां चीजां दसनियां बहुत ज्यादा जरूरी हुंदियां। बेटियां बारे दस दी हां पर पी लैंगी सुन लो।

0: number can range beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
2: Only God can judge me. That right? Only God, baby. Nobody else.
3: They secret. Hey, Oshan. ਹੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮਕਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੱਕ ਠੱਕ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ

जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहिए रेडियो स्टेशन रेडियो सोने वन सन वन एम ते जी आर जी संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो राजेश खन्ना दिया दोनों ही बेटियां ने बॉलीवुड विच किस्मत अजमाई, दोनों नू निराशा भी हाथ लगी। राजेश खन्ना की वड्डी बेटी ट्विंकल खन्ना ने 1995 विच बॉबी देओल दे नाल बरसात फिल्म नाल बॉलीवुड दे विच डेब्यू किया सी। डेब्यू फिल्म तो सुपरहिट रही पर इस तो बाद आने वाली मूवी फ्लॉप रही। ट्विंकल खन्ना ने जान दिल तेरा दीवाना इतिहास इंटरनेशनल खिलाड़ी जुल्मी बादशाह मीला वर्गिया फिल्मों विच काम किया सी। ट्विंकल दी भैन रिंकी खन्ना का करियर भी बॉलीवुड विच कुछ खास नहीं चल पाया। रिंकी खन्ना ने प्यार में कभी कभी मुझे कुछ कहना है वर्गिया फिल्मों विच काम किया पर तकदीर नहीं बदली। ते फिर तकदीर जदो नहीं बदली ना ता फिर जल्दी ही उन्होंने बॉलीवुड तो विदा भी ले लिया ते ब्याह करवा लिया। ट्विंकल खन्ना ने जिते अक्षय कुमार दे नाल ब्याह कीता ता उधर रिंकी खन्ना ने बिजनेसमैन समीर सरन दे नाल ब्याह करवाया।

0: Excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding. And I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602. 0411-022-602. Or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao. ताजे हर कोई जान सके कि की करना है अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा
2: आप माने या ना माने बात बिल्कुल सही है मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को फोन 3630-5438 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: रानी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हैं। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट, ब्रिस्बेन।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है। एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट।
3: थैंक्स अटर्नी यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट।
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जामिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premierTickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
3: बिल्कुल, ओम्स और असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोग असिस्टेड लिविंग, जहाँ केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04-341-27035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04-341-27035। रिमेम्बर द नंबर इज 04-341-27035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्री सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्री सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज्ड बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
1: At Shop 9B, Sunnybank Hills Shopping Town, corner of Kurlam and 661 Crompton Road, Sunnybank Hills, Queensland 4109. For all your jewelry needs, contact 3273-7365. That's 3273-7365. Or email princejewelers@bigpond.com. Family business built on trust.
2: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
6: ये भाई बहुत

0: numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922. A piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
1: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है. यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स. यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस. इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है. फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वोलंगाबा. ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
2: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
1: ऐसा क्या खास है वहाँ?
2: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
1: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
2: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
3: यार, I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: मेरी advice है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का vast experience है और law की entry cases को handle करने में उनकी expertise है. Criminal law, domestic offence, traffic drug offence में 12 साल से ज्यादा का rich experience. और तो और conveyance, family law, immigration laws में भी भारद्वाज and associates के lawyers का vast experience है. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks Atan yaar, I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
2: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
1: अच्छा, वो क्या?
2: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
1: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
2: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कृष्ण कृपा श्री मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागण, आज के इस वेदवाणी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को इस नंद किशोर दास का अभिवंदन। इसी शनिवार 19 सितंबर को सारे विश्व में श्री राधाष्टमी का भव्य उत्सव मनाया जाएगा। इसी कारण आज का हमारा विषय है श्रीमती राधा रानी। सर्वप्रथम राधा का जो रहस्यमय तत्व है, यानी राधा के विषय में जो सच्चाई है, जो विज्ञान है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी है कौन? आम लोग राधा रानी के विषय में नहीं जानते। राधा तत्व वास्तव में बड़ा ही गोपनीय है। ये वो विषय है जिसे वेद में भी छुपाया गया है, और इसके फलस्वरूप कई मानसिक कल्पनाएं हैं या कोई वास्तविक कल्पना है भी नहीं राधा के विषय में। हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिकवादियों के लिए ये राधा कृष्ण की दिव्य जोड़ी एक उलझन या पहेली के समान है, एक पजल है। राधा और कृष्ण के रहस्य को समझने के लिए बहुत ही गहरी आध्यात्मिक दृष्टि की आवश्यकता है। राधा रानी ना तो कोई सामान्य स्त्री, ना ही कोई विशेष स्त्री इस भौतिक जगत की है जिसके साथ कृष्ण अपनी लीलाएं करते थे। वो स्वयं भगवान की आनंददायी शक्ति है जो सदैव उनकी सेवा में तत्पर रहती है। चैतन्य चरितामृत में यह प्रमाण मिलता है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर लादिनी शक्तिरस्माद एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ। राधा कृष्ण एक आत्मा द्वि देह धरी अन्योन्य विलसे रास आस्वादन करी। अर्थात राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाएं भगवान की आंतरिक आनंद प्रदान करने वाली शक्ति लादिनी शक्ति का दिव्य प्रदर्शन है। यद्यपि राधा और कृष्ण अपनी पहचान में एक है, फिर भी उन्होंने स्वयं को अनंत काल के लिए दो अलग अलग दिव्य रूप धारण कर लिए। राधा और कृष्ण एक ही है, परंतु उन्होंने दो शरीर धारण किए हैं। इस प्रकार वे प्रेम के रसों का आस्वादन करते हुए एक दूसरे के साथ आनंद लेते हैं। श्री कृष्ण प्रबल कारक है और श्रीमती राधा रानी उनकी अंतरंगा शक्ति। वेदांत दर्शन के अनुसार शक्तिमान और शक्ति में कोई अंतर नहीं दिखना चाहिए, दोनों एक है। हम एक और दूसरे में भेद नहीं करते, जिस प्रकार हम आग और गर्मी में भेद नहीं करते। वास्तव में राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति है और वो नित्य काल से कृष्ण के आनंद को तीव्र बनाती है। जो अव्यक्तवादी होते हैं वे बिना एक महाभागवत भक्त के इस तत्व को नहीं समझ सकते। राधा नाम ही ये दर्शाता है कि श्रीमती राधा रानी शाश्वत रूप से श्री कृष्ण के सुखों की सर्वोच्च स्वामिनी है। अतः वे श्री कृष्ण को जीव जंतुओं की सेवा पहुंचाने का माध्यम है। इसी कारण वृंदावन में भक्तजन श्री कृष्ण के प्रेमी सेवकों के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए राधा रानी की कृपा की कामना करते हैं। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के प्रेम का एक प्रदर्शित रूप है। श्री राधा लादिनी शक्ति है, यानी कृष्ण की आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। कृष्ण शक्तिमान है और राधा ऊर्जा या शक्ति है। राधा और कृष्ण इस मायने में एक ही आत्मा है कि वे शक्ति और शक्तिमान है। भले ही वे एक आत्मा है, फिर भी अनंत काल से वे श्री कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन में मधुर लीलाओं का आनंद लेने के लिए दो अलग अलग रूपों में प्रकट हुए हैं। स्वयं भगवान कृष्ण के पास असीमित शक्तियां हैं, जिन्हें तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आंतरिक शक्ति या अंतरंग शक्ति, बाहरी शक्ति या बाहिरंग शक्ति, और तटस्थ शक्ति या तटस्था शक्ति। तटस्थ शक्ति जीव शक्ति है। बाहरी ऊर्जा वो ऊर्जा है
जिसके द्वारा इस भौतिक संसार का सृजन पालन तथा विनाश होता है, और आंतरिक शक्ति उनकी वो शक्ति है जिसके द्वारा वो अपने आध्यात्मिक संसार को बनाए रखे हैं। यह आंतरिक शक्ति या अंतरंग शक्ति, जिसे स्वरूपा शक्ति या चित शक्ति के रूप में भी जाना जाता है, उसके तीन पहलू है। संधिनी शक्ति उनके नित्य अस्तित्व का पहलू है। भगवान की ये अस्तित्वगत शक्ति जिसके द्वारा वे अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। संधिनी शक्ति का सार भाग शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर आधारित है। कृष्ण की माता, पिता, धाम, घर, शैया, आसन आदि सभी शुद्ध सत्व के ही स्वरूपांतर है। तो ये अंतरंग शक्ति का एक पहलू है जिसे संधिनी शक्ति कहते हैं, और दूसरा पहलू है संवित शक्ति। संवित शक्ति भगवान की चेतना या ज्ञानात्मक शक्ति का वो स्वरूप है जिसे ज्ञान के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वो शक्ति जिसके द्वारा भगवान स्वयं को जानते हैं और दूसरों को भी अपना ज्ञान कराते हैं। संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है कि परम भगवान श्री कृष्ण है। तो ये था अंतरंग शक्ति का दूसरा पहलू, संवित शक्ति। अब अंतरंग शक्ति का तीसरा पहलू लादिनी शक्ति है। लादिनी शक्ति श्री कृष्ण का आनंदमय स्वरूप है जिसके द्वारा भगवान स्वयं प्रसन्न होते हैं और भक्त पोषित होते हैं। इस शक्ति के द्वारा वे दिव्य आनंद से युक्त रहते हैं और अपने भक्तों को आनंद का अनुभव कराते हैं। अब हम विशेष रूप से लादिनी शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। लादिनीर सार प्रेम, प्रेम सार भाव, भावेर परम काष्ठा नाम महाभाव। अर्थात लादिनी शक्ति का सार भगवत प्रेम है, भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का सर्वोच्च विकास महाभाव है। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। अर्थात श्री राधा ठाकुरानी महाभाव का साक्षात स्वरूप है। वे सभी दिव्य गुणों की खान है और भगवान श्री कृष्ण की सभी प्रिय पत्नियों, गोपियों, सहचारियों में शिरोमणि या सर्वश्रेष्ठ रत्न है। कृष्ण प्रेम भावित यान रचितेंद्रिय काय, कृष्ण निज शक्ति राह क्रीड़ाड़ सहाय। उनके मन, इंद्रियां और शरीर कृष्ण के प्रेम में संलग्न है। वो स्वयं कृष्ण की शक्ति है और वो उनकी लीलाओं में उनकी सहायता करती है। श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समान ही पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। किसी को भी उन्हें भौतिक नहीं समझना चाहिए। वो निश्चित रूप से उन बद्ध जीवों की तरह नहीं है जिनके पास भौतिक इंद्रियों से ढके हुए स्थूल और सूक्ष्म भौतिक शरीर होते हैं। वो पूर्णतः आध्यात्मिक है और उनका शरीर तथा मन दोनों एक ही आध्यात्मिक स्वरूप के हैं। क्योंकि उनका शरीर आध्यात्मिक है, इसलिए उनकी इंद्रियां भी आध्यात्मिक है। इस प्रकार उनका शरीर, मन और इंद्रियां पूरी तरह से कृष्ण के प्रेम में चमकती है। वो साक्षात लादिनी शक्ति यानी भगवान की अंतरंग शक्ति की आनंद देने वाली ऊर्जा है, और इसी कारण वो श्री कृष्ण के लिए आनंद का एकमात्र स्रोत है। श्री कृष्ण ऐसी किसी भी वस्तु का आनंद नहीं ले सकते जो आंतरिक रूप से उनसे भिन्न हो। इसलिए राधा और श्री कृष्ण अभिन्न या एक ही है। श्री कृष्ण की अंतरंग शक्ति के संधिनी अंश ने श्री कृष्ण के सर्व आकर्षक रूप को प्रकट किया है, और उसी अंतरंग शक्ति ने लादिनी विशेषता के माध्यम से श्रीमती राधारानी को प्रस्तुत किया है, जो कि सर्व आकर्षक के भी आकर्षण है। श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं में श्रीमती राधारानी की कोई बराबरी नहीं कर सकता।
कृष्णकांत गण देखी त्रिविध प्रकार, एक लक्ष्मी गण पूरे महिषी गण आर, व्रजांगना रूप आर कांत गण सार, श्री राधिका हैते कांत गणेर विस्तार। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सहचरियां तीन प्रकार की है, भाग्य की देवियां यानी लक्ष्मियां, फिर रानियां और फिर ब्रज की गोपियां जो उन सब में सबसे श्रेष्ठ है। ये सभी सहचरियां श्री राधिका जी से ही प्रकट होती है। अवतारी कृष्ण ये छे करे अवतार, अम्शिनी राधा हैते तीन गणेर विस्तार। जिस प्रकार सभी अवतारों के मूल स्रोत भगवान कृष्ण है, उसी प्रकार श्री राधा इन सभी स्वरूपिनियों शक्तियों का मूल कारण है। गोविंदानंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांत शिरोमणि। अर्थात राधा ही गोविंद को आनंद देने वाली है और वे ही गोविंद को मोहित करने वाली मोहिनी भी है। वे गोविंद का सर्वस्व जीवन का आधार है और उनकी समस्त संगिनियों में शिरोमणि है। यहां तक कि बृहद गौतमीय तंत्र में भी कहा है, देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मी मयी सर्व कांति ही सम्मोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधारानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष प्रतिरूप है। वो भाग्य की सभी देवियों या लक्ष्मी जी के सभी रूपों की केंद्रीय आकृति है। उनके भीतर पूर्ण आकर्षक भगवान को भी आकर्षित करने का संपूर्ण आकर्षण समाहित है। वो भगवान की आदि अंतरंग शक्ति या यिलादिनी शक्ति है। जगत मोहन कृष्ण ताहारा मोहिनी, अतएव समस्तेरा पर ठाकुरानी। भगवान श्री कृष्ण पूरे संसार को मोहित करते हैं, परंतु श्री राधा उन्हें भी मोहित कर लेती है, इसलिए वे सभी की सर्वोच्च देवी है। राधा पूर्ण शक्ति कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, द्वि वस्तु भेद नाई शास्त्र प्रमाण। श्री राधा पूर्ण शक्ति है और भगवान कृष्ण पूर्ण शक्तिमान है। प्रकट शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। राधा कृष्ण ऐछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रास आस्वादिते धरे द्वि रूप। तो इस प्रकार राधा और श्री कृष्ण एक ही स्वरूप है, फिर भी लीलाओं का आस्वादन करने के लिए उन्होंने दो रूप धारण किए हैं। राधिका हयेन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति हिलादिनी नाम जाहार। अर्थात श्रीमती राधिका प्रेम का रूपांतरण है। वो कृष्ण की अंतरंग शक्ति है जिसे हिलादिनी कहते हैं। हिलादिनी कराय कृष्णे आनंदास्वादन, लादिनीर द्वारा करे भक्तेर पोषण। वो लादिनी शक्ति कृष्ण को आनंद प्रदान करती है और उनके भक्तों का पोषण करती है। आमतौर पर लोग श्रीमती राधारानी और श्री कृष्ण के बीच के शुद्ध प्रेम पूर्वक संबंध को नहीं समझते हैं। कृष्ण के साथ राधारानी के प्रेम संबंध कोई साधारण सांसारिक प्रेम संबंध नहीं है। मनुष्यों को कृष्ण के प्रति राधारानी के प्रेम के शुद्ध रूप को समझना चाहिए। इस भौतिक संसार में यदि दो लोगों के बीच आकर्षण होता है तो वे कहते हैं मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन वास्तव में यह प्यार शब्द या प्रेम शब्द इस संदर्भ में उपयोग करने के लिए नहीं है, बल्कि ये केवल कृष्ण और जीवों के बीच के विशुद्ध प्रेम पूर्ण संबंध के लिए है। प्रेम का अर्थ है कि वहां कोई स्वार्थ नहीं है। व्यक्ति केवल भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए काम करता है, क्योंकि भौतिक प्रेम या प्यार हमेशा इंद्रियां तृप्ति पर आधारित होता है, इसलिए यह वास्तव में काम वासना या वासना है, प्रेम या प्यार नहीं है। जब कुछ लोग शास्त्रों में राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम पूर्ण संबंध के बारे में पढ़ते हैं, तो
तो वे तुरंत भौतिक प्रेम के बारे में सोचने लगते हैं, परंतु राधा रानी और कृष्ण के बीच का प्रेम संबंध शुद्ध प्रेम है, क्योंकि राधा रानी केवल कृष्ण की संतुष्टि के लिए उनसे प्रेम करती है। वास्तव में राधा रानी भगवान की अंतरंग शक्ति लादिनी शक्ति है, जिनका कार्य कृष्ण को आनंद प्रदान करना है। अनादि काल से वे कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भक्ति भाव से उनकी सेवा कर रही है। अर्थात हमारे लिए प्रेम और काम वासना के बीच के अंतर को जानना आवश्यक है, ताकि हम राधा रानी के प्रेम में भाव को समझ सके। गोपी गणेर प्रेमेर रूढ़ भाव नाम, विशुद्ध निर्मल प्रेम कभु नहे काम। गोपियों के प्रेम को रूढ़ भाव कहा जाता है, ये पवित्र और निष्कलंक है, ये किसी भी समय वासना नहीं होता है। कृष्ण के साथ अपने प्रेम पूर्ण व्यवहार में गोपियों की स्थिति दिव्य या अलौकिक है, उनके इस भाव को रूढ़ भाव कहा जाता है। यद्यपि ये प्रत्यक्ष रूप से सांसारिक काम वासना जैसा प्रतीत होता है, फिर भी किसी को इसे सांसारिक लैंगिक प्रेम समझने की भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भगवान के प्रति विशुद्ध और अभिक्षित प्रेम है। काम प्रेम दोहाकार विभिन्न लक्षण, लौह आर हेम ये छे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम के लक्षण अलग अलग है, ठीक वैसे ही जैसे लोहे और सोने की प्रकृति अलग होती है। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। अर्थात अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की इच्छा काम या लालसा है, परंतु भगवान की इंद्रियों को प्रसन्न करने की इच्छा प्रेम है। एक व्यक्ति को कामुक या शारीरिक प्रेम और शुद्ध प्रेम के बीच अंतर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि वे अलग अलग श्रेणियों के हैं और उनके बीच बहुत बड़ा अंतर है। वे एक दूसरे से उतने ही अलग है जितना लोहा सोने से अलग होता है। प्रामाणिक शास्त्र पवित्र प्रेम को इस प्रकार समझाते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो हो स प्रेमा परिकीर्तितः। यदि एक वैवाहिक संबंध के विच्छेद या टूटने का पर्याप्त कारण हो और फिर भी ऐसा विच्छेद नहीं होता है, तो प्रेम के ऐसे प्रगाढ़ संबंध को शुद्ध कहा जाता है। अधीनस्थ गोपियां श्री कृष्ण के साथ ऐसे शुद्ध प्रेम के बंधन में बंधी थी। उनके लिए इंद्रियां तृप्ति पर आधारित कामुक प्रेम का कोई प्रश्न ही नहीं था। अपने व्यक्तिगत हितों की परवाह किए बिना श्री कृष्ण को हर तरह से सुखी देखना ही उनके जीवन का एकमात्र कार्य था। उन्होंने अपनी आत्माओं को केवल परमेश्वर श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए समर्पित कर दिया था। गोपियों और कृष्ण के बीच कामुक प्रेम का लेश मात्र भी अंश नहीं था। श्री चैतन्य चरितामृता के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पूरे अधिकार या दावे के साथ कहते हैं कि यौन प्रेम अर्थात शारीरिक संबंध व्यक्तिगत इंद्रियां तृप्ति का विषय है। वेदों में लोकप्रियता, पितृत्व, धन आदि की इच्छाओं से संबंधित सभी नियामक सिद्धांत इंद्रियां तृप्ति के ही विभिन्न चरण है। कई बार इंद्रियां तृप्ति के कार्यों को दूसरी वस्तुओं के आड़ में किए जाते हैं, तो किन किन चीजों के आड़ में ये इंद्रियां तृप्ति की जाती है, ये जानकर संभवतः आपको आश्चर्य होगा। इंद्रियां तृप्ति या भोग के कार्य जन कल्याण, राष्ट्रवाद, धर्म, परोपकार, नैतिक संहिताओं, बाइबल की संहिताओं, स्वास्थ्य निर्देशों, सकाम कर्मों, संकोच या लज्जा, सहनशीलता, व्यक्तिगत आराम, भौतिक बंधनों से मुक्ति, प्रगति, पारिवारिक स्नेह,

सिद्धांतों का पालन करते हुए अधिकांश लोग अपने व्यक्तिगत हित या स्वार्थ को त्याग नहीं करते, परंतु इन सबसे ऊपर एक दिव्य चिन्मय अवस्था है जिसमें व्यक्ति स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का केवल एक शाश्वत सेवक मानता है। इस दासत्व भाव में किए गए सभी कार्य ईश्वर के प्रति शुद्ध प्रेम कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण की पूर्ण इंद्रिया तृप्ति या प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। हालांकि किसी कार्य के फल या परिणाम को भोगने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य इंद्रिया तृप्ति का ही कार्य है। ऐसे कार्य कभी स्थूल तो कभी सूक्ष्म रूपों में दिखाई देते हैं। तो काम वासना का उद्देश्य केवल अपनी इंद्रियों का भोग करना है, परंतु प्रेम भगवान के सुख भोग को संतुष्ट करता है और इसलिए यह अत्यंत शक्तिशाली है। सामाजिक रीति रिवाज, शास्त्रीय निर्देश, शारीरिक मांगे, सकाम कर्म, लज्जा, धैर्य, शारीरिक सुख, आत्मतृप्ति और वर्णाश्रम धर्म का मार्ग जिसे त्याग करना अत्यंत कठिन है, गोपियों ने भगवान कृष्ण की सेवा के लिए अपने परिवारों के साथ इन सभी का परित्याग कर दिया और अपने रिश्तेदारों की सजा तथा डांट फटकार को सहन किया। वे केवल श्री कृष्ण की प्रसन्नता या सुख के लिए उनकी प्रेममय सेवा करती है, अपने कोई व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं। इसे भगवान कृष्ण के प्रति दृढ़ आसक्ति कहते हैं। ये एक निष्कलंक स्वच्छ वस्त्र की भांति पूर्णतः शुद्ध है, जिस पर कोई दाग नहीं होता। इसलिए काम वासना और प्रेम बिल्कुल भिन्न है। काम घने अंधकार के समान है, परंतु प्रेम चमकते हुए सूर्य के समान है। तो इस प्रकार गोपियों के प्रेम में काम वासना का लेश मात्र भी अंश नहीं है। कृष्ण के साथ उनका संबंध केवल कृष्ण की ही प्रसन्नता या सुख के लिए है, उनकी अपनी व्यक्तिगत प्रसन्नता के लिए नहीं। उनका ये भाव श्रीमद् भागवत में स्पष्ट है। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटविम् अतसि तद् व्यथते न किं स्वित् कुरुपाब्धिभिर् भ्रमति धीर् भवदायुषां नः। श्रीमद् भागवतम या भागवत महापुराण के 10वें स्कंद 31वें अध्याय 19वां श्लोक है, गोपी गीत अध्याय का, और इसका अनुवाद इस प्रकार है। हे परम प्रिय, आपके चरण कमल इतने कोमल है कि हम उन्हें अपने वक्षस्थल पर भी बहुत धीरे से डरते डरते रखते हैं, ताकि आपके चरणों को चोट ना लगे। हमारा जीवन केवल आप में ही बसता है, इसलिए जब आप वन के मार्ग पर विहार करते हैं तो हमारे मन इस चिंता से भर जाते हैं कि कहीं आपके सुकुमार चरणों में कंकड़ पत्थर न चुभ जाए। तो गोपियां अपने सुख या दुख की परवाह नहीं करती। उनकी सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियां भगवान कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए समर्पित होती है। उन्होंने कृष्ण के लिए सब कुछ त्याग दिया। कृष्ण को प्रसन्नता देने के प्रति उनकी पूर्ण रूप से शुद्ध आसक्ति है। कृष्ण का विचार गोपियों के प्रति क्या है, वो कृष्ण स्वयं कहते हैं। एवं मदोर्थोज्झित लोक वेद स्वानाम ही वो मई अनुवृत्त ये बला मया परोक्षम भजता तिरोहितम मासूयितुम मारहथ तत्प्रियम प्रियः। कि हे मेरी प्रिय गोपियों, तुमने मेरे लिए सामाजिक रीति रिवाजों, शास्त्रिक नियमों और अपने सगे संबंधियों तक का परित्याग कर दिया है। मैं तुम्हारे सामने से केवल इसलिए ओझल हुआ था ताकि मेरे प्रति तुम्हारा ध्यान अर्थात एकाग्रता और अधिक बढ़ सके। क्योंकि मैं तुम्हारे भले के लिए ही ओझल हुआ था, इसलिए तुम्हें मुझसे असंतुष्ट या अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। अब इसके बावजूद हम देखते हैं कि गोपियां अपने शरीरों का ध्यान रख रही है और स्वयं को बहुत सुंदर ढंग से

सजा रही है। कोई ये कैसे समझ सकता है कि वे अपनी इंद्रियां तृप्ति के लिए कार्य नहीं कर रही है। इस संदर्भ में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, अब गोपियां अपने शरीर के प्रति जो कुछ भी स्नेह दिखाती है उसे निश्चित रूप से केवल भगवान कृष्ण के सुख के लिए ही समझो। गोपियां सोचती है, मैंने ये शरीर भगवान कृष्ण को अर्पित कर दिया है, वे ही इसके स्वामी है और इससे उन्हें आनंद मिलता है। वे इस शरीर को देखने और स्पर्श करने में आनंद पाते हैं। तो गोपियों की ये सोच है, इसी कारण से वे अपने शरीरों को स्वच्छ और सुसज्जित करती है। आदि पुराण में श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को कहते हैं, निजांगम अपि या गोप्यो ममेति समुपासते ताभ्यः परम न मे पार्थ निगूढ़ प्रेम भाजनम। हे अर्जुन, मेरे प्रति गहरे प्रेम के गोपियों से बढ़कर कोई और पात्र नहीं है जो अपने शरीरों को केवल इसलिए स्वच्छ और सुसज्जित करती है क्योंकि वे अपने शरीरों को मेरा मानती है। इसी संदर्भ में हरे कृष्ण संस्था के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद कहते हैं, गोपियों द्वारा प्रदर्शित भगवान के प्रति निष्काम प्रेम की कोई तुलना नहीं हो सकती, इसलिए हमें गोपियों द्वारा अपने व्यक्तिगत श्रृंगार में दिखाई गई सावधानी को गलत नहीं समझना चाहिए। गोपियों ने स्वयं को जितना संभव हो सके उतना सुंदर ढंग से सजाया, केवल इसलिए ताकि उन्हें देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो सके। उनकी कोई अन्य गुप्त इच्छा नहीं थी। उन्होंने अपने शरीरों और अपनी हर संपत्ति को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया था, ये मानकर कि उनके शरीर केवल कृष्ण के ही सुख के लिए है। उन्होंने स्वयं को इस समझ के साथ सजाया कि उन्हें देखने और स्पर्श करने से श्री कृष्ण सुखी होंगे। और श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी आगे कहते हैं, गोपियों के भाव की एक और अद्भुत विशेषता है, इसकी शक्ति बुद्धि की समझ से परे है। जब गोपियां भगवान कृष्ण को देखती है तो उन्हें असीम आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही उनके भीतर ऐसे सुख की कोई इच्छा नहीं होती। गोपियां उस सुख से करोड़ों गुना अधिक सुख का आस्वादन करती है जो भगवान कृष्ण को उन्हें देखकर प्राप्त होता है। गोपियों की अपने स्वयं के सुख में कोई रुचि नहीं होती, फिर भी उनका आनंद बढ़ता ही जाता है। ये वास्तव में एक विरोधाभास है, एक कॉन्ट्रडिक्शन है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी कहते हैं कि इस विरोधाभास या कॉन्ट्रडिक्शन का उन्हें केवल एक ही समाधान दिखाई देता है। गोपियों का आनंद उनके प्रिय के आनंद में ही निहित है। जब भगवान कृष्ण गोपियों को देखते हैं तो उनका आनंद बढ़ जाता है और साथ ही उनकी अद्वितीय मधुरता भी बढ़ जाती है। गोपियां सोचने लगती है, श्री कृष्ण ने मुझे देखकर इतना सुख प्राप्त किया है, तो ये विचार गोपियों के मुखमंडल और शरीर की पूर्णता तथा सुंदरता को और बढ़ा देता है। गोपियों के सौंदर्य को देखकर भगवान कृष्ण का सौंदर्य बढ़ जाता है और गोपियां जितना अधिक भगवान कृष्ण के सौंदर्य को देखती है उनका सौंदर्य भी उतना ही अधिक बढ़ता जाता है। इस प्रकार उन दोनों के बीच एक ऐसी प्रतियोगिता शुरू हो जाती है जिसमें कोई भी अपनी हार स्वीकार नहीं करता। हालांकि श्री कृष्ण गोपियों के सौंदर्य और उत्तम गुणों से सुख प्राप्त करते हैं और जब गोपियां उनके इस सुख को देखती है तो गोपियों का आनंद और बढ़ जाता है। इसलिए हम ये पाते हैं कि गोपियों का आनंद भगवान कृष्ण के आनंद को पोषित करता है। इसी कारण उनके प्रेम में काम वासना का दोष विद्यमान नहीं है। गोपियों की स्थिति अत्यंत उलझन भरी विस्मयकारी है, क्योंकि यद्यपि वे व्यक्तिगत सुख नहीं चाहती है फिर भी वो सुख उन पर थोप दिया गया था। इस उलझन का समाधान यह है कि श्री कृष्ण के सुख की अनुभूति गोपियों के सुख से बंधी हुई है, इसलिए वृंदावन के भक्त गोपियों
अर्थात राधा रानी और उनकी सखियों की सेवा करने का प्रयास करते हैं। यदि कोई गोपियों की कृपा प्राप्त कर लेता है तो वह आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर लेता है, क्योंकि गोपियों की संस्तुति पर कृष्ण तुरंत एक भक्त की सेवा स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य कृष्ण के बजाय गोपियों को प्रसन्न करना चाहते थे, परंतु उनके समकालीन लोगों ने उन्हें गलत समझा और इसी कारण से भगवान चैतन्य ने गृहस्थ जीवन का परित्याग कर दिया और संन्यास ग्रहण कर लिया। सुंदर गोपियों को देखकर श्री कृष्ण आनंदित हो उठते हैं और इससे गोपियां भी प्रफुल्लित हो उठती है, जिससे उनके नवयौवन से युक्त मुखमंडल और शरीर खिल उठते हैं। गोपियों और श्री कृष्ण के बीच बढ़ती सुंदरता की ये असीम प्रतियोगिता इतनी सूक्ष्म है कि कभी कभी सांसारिक नैतिकतावादी इन लीलाओं को शुद्ध रूप से कामुक समझने की भूल कर बैठते हैं। परंतु ये लीलाएं बिल्कुल भी सांसारिक नहीं है, क्योंकि कृष्ण को संतुष्ट करने की गोपियों की तीव्र इच्छा इस पूरे दृश्य को भगवान के शुद्ध प्रेम से सराबोर कर देती है, जिसमें यौन भोग या वासना का एक भी दाग नहीं होता। गोपियों के प्रेम का एक और स्वाभाविक लक्षण है जो ये दर्शाता है कि इन गोपियों में लेश मात्र भी काम वासना नहीं है। गोपियों का प्रेम भगवान कृष्ण के माधुर्य सौंदर्य को पोषित करता है, बदले में वो माधुर्य उनके प्रेम को और बढ़ा देता है, जिससे उन्हें परम संतोष मिलता है। प्रेम करने वाले को आश्रय कहते हैं और जिससे प्रेम किया जा रहा है उसे विषय कहते हैं। तो आश्रय का सुख उसके विषय के सुख में ही निहित होता है। तो ये वासना या व्यक्तिगत संतुष्टि का संबंध नहीं है। जब भी निस्वार्थ प्रेम होता है उसकी यही शैली या रीति होती है। प्रेम का भंडार प्रेमी तब आनंद प्राप्त करता है जब उसका प्रिय पात्र प्रसन्न होता है। जब प्रेम का यह सुख श्री कृष्ण की सेवा में बाधा डालता है तो भक्त ऐसे आनंद या भावों के प्रति भी क्रोधित हो उठता है। इसका उदाहरण भक्ति रसामृत सिंधु में दिया गया है कि श्री दारुक को अपने प्रेम के दिव्य आनंद या भावों से कोई सुख नहीं मिला, क्योंकि उनके कारण उनके अंग स्तब्ध या जड़ हो गए और इस प्रकार भगवान कृष्ण को पंखा झलने की उनकी सेवा में बाधा आ रही थी। उसी भक्ति रसामृत सिंधु से एक और उदाहरण कि कमल नयनी श्री राधारानी ने उस दिव्य प्रेम या भाव की तीव्र निंदा की जिसके कारण अश्रुधारा बहने लगी थी और गोविंद के दर्शन करने में उनकी दृष्टि में बाधा आ रही थी। इसके अतिरिक्त शुद्ध भक्त कभी भी 5 प्रकार की मुक्तियों के माध्यम से अपने व्यक्तिगत सुख की आकांक्षा करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रेममय सेवा का परित्याग नहीं करते हैं। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद ने कहा है, कृष्ण का एक शुद्ध भक्त जो उनसे अनन्य प्रेम करता है, भगवान के विग्रह में विलीन होने से लेकर अन्य प्रकार की मुक्तियों को स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से मना कर देगा। वो केवल अनन्य सेवा से ही संतुष्ट रहता है, उसे मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होती है। शुद्ध भक्ति में तो मुक्ति की भी आकांक्षा नहीं होती। गोपियों का स्वाभाविक प्रेम काम वासना के लेश मात्र अंश से भी रहित है। यह निष्कलंक देदीप्यमान चमकदार और पिघले हुए सोने की भांति शुद्ध है। गोपियां भगवान कृष्ण की सहायिकाएं, गुरु, सखियां, पत्नियां, प्रिय शिष्याएं, अंतरंग सहेलियां और दासियां हैं। गोपियां श्री कृष्ण की इच्छाओं को जानती है और वे उनके सुख भोग के लिए पूर्ण प्रेममयी सेवा करना जानती है। वे अपने प्रियतम की संतुष्टि के लिए अत्यंत कुशलता से अपनी सेवा संपन्न करती है। सेई गोपी गण मध्य उत्तम राधिका, रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। गोपियों में श्रीमती राधिका सर्वोपरि है। वे सौंदर्य, उत्तम गुणों, सौभाग्य और इन सब से बढ़कर
प्रेम में सभी से श्रेष्ठ है। आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, हे पार्थ, तीनों लोकों में यह पृथ्वी विशेष रूप से भाग्यशाली है, क्योंकि पृथ्वी पर वृंदावन धाम है और वहां गोपियां विशेष रूप से महिमामयी है, क्योंकि उनमें मेरी श्रीमती राधा रानी विराजमान है। तो राधाष्टमी उत्सव के उपलक्ष में हम आपकी सेवा में राधा तत्व पर चर्चा कर रहे थे। यदि हमारे किसी भी श्रोतागणों को आज के विषय पर कुछ प्रश्न हो या टिप्पणी हो तो आप उसे ईमेल के द्वारा हमारे पास भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vedavani@gmail.com। इस्कॉन ब्रिस्बन के द्वारा राधाष्टमी का उत्सव इसी शनिवार 19 सितंबर को मनाया जाएगा शाम को 4:30 बजे से इस्कॉन ब्रिस्बन 8 Lee Road डेरा पर। सभी को सादर आमंत्रण है। और अब आप सभी की सेवा में कुछ भजन कीर्तन।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए।

Good morning, Brisbane. Namaste, adab, sat sri akal. Very good morning and a very warm welcome to Radio Brisbane. मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन और आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रेसवानी में प्रोग्राम चानी का सफर। सुबह हो चुकी है और थोड़ा सा ब्राइटर और बिल्कुल अपने घर जैसा माहौल है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारा दिन जो है हमेशा खुशी खुशी ही बीते। चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के लिए निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल ड्रॉप करने वाले हैं या फिर बस चाय के साथ अपनी सुबह इंजॉय कर रहे हैं, तो ब्रिसवानी है ना, तो मॉर्निंग ऑर्डिनरी कैसे हो सकती है। दोस्तों आज है वेनेसडे, मतलब वीक का वो पॉइंट जहाँ पे मंडे की थकान थोड़ी सी पीछे रह गई है और वीकेंड अभी थोड़ा दूर है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपका दिन कैसा भी होगा इसका डिसीजन जो है अलार्म बंद करने के बाद नहीं, माइंड सेट करने के बाद होता है। सो स्माइल कीजिए, शोल्डर स्ट्रेट कीजिए और खुद से कहें आज का दिन मेरा है। आइए इसी के साथ शुरू करते हैं ये प्रोग्राम। इस गीत के साथ सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी

इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रसवानी, प्रोग्राम शुरू हो चुका है जाने का सफर। और इस सफर को बहुत अच्छा बनाने के लिए हमेशा पॉजिटिव वाइब्स जरूरी होते हैं। पॉजिटिव वाइब्स के साथ पॉजिटिव गीत भी उतने ही जरूरी है, जो हमारे पूरे दिन हमारे इन्वायरमेंट को कहते हैं ना कि टारगेट करता है। जी हाँ, जैसे हम चीज़ें सुनते हैं देखते हैं वैसा ही दिन हमारा बीतता है। इसीलिए अच्छी चीज़ों में ध्यान रखिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव वाइब्स अपने आसपास जो है फैलाएं। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑनली ऑन रेडियो प्रसवानी।

इसी के साथ अब वक्त हो चला है ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया की न्यूज जानने का, तो चलिए अब बात करते हैं ब्रिस्बेन और ऑस्ट्रेलिया के इम्पोर्टेंट अपडेट्स की। ब्रिस्बेन सिटी काउंसिल ने अपनी मेजर सेंटर्स रिव्यू में कुछ प्रपोज्ड बिल्डिंग्स हाइट्स चेंजेस जो है वो रिवाइज किए हैं। कैरिनडेल और इंडोर रोपली जैसे जो है एरियाज, उसमें प्रपोज्ड हाइट्स को लेकर कम्युनिटी फीडबैक के बाद चेंजेस किए गए हैं। नंदा के कुछ पार्ट्स जो है उसमें भी फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए हायर बिल्डिंग्स का प्रोविजन रखा गया है। ओवरऑल अगर ओवरऑल बात करें तो ओवरऑल फोकस है पब्लिक ट्रांसपोर्ट और फैसिलिटीज के पास ज्यादा हाउसिंग क्रिएट करना, लेकिन साथ ही रेजिडेंट्स के कंसर्न्स को भी एड्रेस करना। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

डिप्रेशन भी धीरे धीरे एक मेजर चैलेंज की तरफ जा रही है, एकोमोडेशन। एस्टीमेट्स के मुताबिक गेम्स के टाइम ब्रिस्बेन को थाउजेंड्स ऑफ एडिशनल रूम्स की जरूरत हो सकती है। टेम्परेरी एकोमोडेशंस के लिए कैरावान्स, क्रूज शिप्स और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एकोमोडेशंस जैसे आइडियाज डिस्कस किए जा रहे हैं। सो ब्रिस्बेन वालों, ओलंपिक्स अभी दूर लग रहा है लेकिन सिटी की प्लानिंग ऑलरेडी फुल स्विंग में है। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

हाँ जी, तो आइए अब बात करते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि है ब्रिस्बेन वेदर की। सितंबर का स्प्रिंग वेदर कभी सनशाइन, कभी क्लाउड्स और कभी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस लेकर आ सकता है। 16 सितंबर यानी कि आज का जो फॉरकास्ट है उसके मुताबिक ब्रिस्बेन में पार्टली क्लाउडी कंडीशंस एक्सपेक्टेड है और साउथ ईस्ट क्वींसलैंड में वेदर जनरली माइल्ड रहने वाला है। तो घर से निकलते वक्त सनग्लासेस चेक कीजिए, वाटर बॉटल चेक कीजिए और पॉजिटिव एटीट्यूड तो भाई डबल चेक कीजिए। और क्वींसलैंड में रिसेंट वीक्स में अबव एवरेज टेम्परेचर्स और बुश फायर एक्टिविटी भी कंसर्न बनी हुई है। आपको बताएं, इसीलिए अगर आप रीजनल एरियाज की तरफ ड्राइव कर रहे हैं तो लोकल वार्निंग जरूर चेक कर लीजिएगा। आइए इसी के साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वींसलैंड की लोकल कम्युनिटीज के लिए बुशफायर सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है, स्पेशली ड्राई और हॉट कंडीशंस के दौरान। वहीं अगर ग्लोबल की बात करें तो वर्ल्ड स्टेज पर टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट, जियोपॉलिटिक्स और एआई रेगुलेशन जैसे इश्यूज हेडलाइंस में बने हुए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर, न्यूज सुनना जरूरी है लेकिन हर न्यूज को लेकर स्ट्रेस लेना जरूरी नहीं है। सो स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे काम। आइए इसके साथ सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक।

मेरी ब्रिस्बेन फैमिली, धीरे धीरे हम आ गए हैं आज के ब्रिस्बानी मॉर्निंग शो के एंड पर आपके साथ। ये पल कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट आरजे जानी जैन और मेरी तरफ से आपको एक ब्यूटीफुल वेडनेसडे विश। आज किसी को खुश कीजिए, खुद का भी ख्याल रखिए, ड्राइव कर रहे हैं तो सेफली ड्राइव जरूर कीजिए और याद रखिए लाइफ में हर दिन परफेक्ट नहीं होता लेकिन हर दिन में एक परफेक्ट मोमेंट जरूर हो सकता है और वो मोमेंट हमें ही बनाना होता है। सो कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग एंड वेयर एवर यू आर इन ब्रिस्बेन, रेडियो ब्रिस्बानी को अपने साथ रखिए। मैं मिलूंगी फिर कल फ्रेश मॉर्निंग के साथ। Till then, stay happy, stay safe, stay positive. This is RJ Jani signing off from Radio Brisbane. Have a beautiful Wednesday, Brisbane. Take care.

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। जन्म से खामोश लेकिन हथियारों का जुनून, ट्रंप पर गोली चलाने वाले आरोपी का हैरान करने वाला सच। साल 2024 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस मैथ्यू क्रूक्स के बारे में FBI ने हाल ही में जारी इंटरव्यू डॉक्यूमेंट्स में एक नई जानकारी साझा की है। मैथ्यू क्रूक्स वही 20 साल का बंदूकधारी था जिसने जुलाई 2024 में एक कैंपेन रैली के दौरान तत्कालीन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की कोशिश की थी। क्रूक्स के पिता मैथ्यू ने जांचकर्ताओं को बताया कि उनका बेटा बचपन से ही बहुत शांत रहता था। FBI के मुताबिक उन्होंने कहा, जब थॉमस पैदा हुआ तो वो रोया नहीं था और तब से वो हमेशा शांत रहता था, लेकिन उसे हथियारों का जबरदस्त जुनून था। ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से झटका, मिड टर्म इलेक्शन में नहीं लागू होगा मेल इन वोटिंग रूल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को US सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। ट्रंप ने देश भर के वोटरों को मेल बैलेट भेजने के तरीके को बदलने की बात कही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस प्लान को खारिज कर दिया है। चुनाव अधिकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर इस साल के मिड टर्म इलेक्शन में इसे लागू किया जाता है तो इसके बहुत बुरे नतीजे हो सकते थे। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। नेपाल के लिए संकट मोचन बना भारत, 6 मजदूरों को बचाने की जंग जारी, कैलाश यात्रियों ने बदला रास्ता। नेपाल में 26 अगस्त 2026 को आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद से अब तक राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। एक तरफ नुवाकोट जिले के चिल्मे सुरंग के अंदर फंसे 6 श्रमिकों को निकालने के लिए नेपाल और भारत की संयुक्त टीम अभियान के अंतिम चरण में पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ रसुआगढ़ी सीमा चौकी के बाढ़ में क्षतिग्रस्त होने के बाद नेपाल चीन के बीच यात्रियों की आवाजाही अब वैकल्पिक मार्गों से हो रही है। इनमें बड़ी संख्या कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों की है। UPI से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा, 2000 से ऊपर के ट्रांजैक्शन पर लगेगा ₹5 चार्ज। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के नियमों में कड़ा बदलाव किया गया है। ₹2000 से ज्यादा के कुछ ट्रांजैक्शन पर ₹5 का चार्ज लगेगा, लेकिन ग्राहकों के लिए ये मुफ्त होगा। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: और दोस्तों, जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन सब्र, समझ और हिम्मत के साथ हम जरूर मजबूत बनते जाते हैं। ठीक है, तो हिम्मत ना हार,
1: हिम्मत चलते रहो। हाँ, चल चला,
0: गिरते हो तो फिर उठ जाओ। यू नो दैट
1: फकीरा चल चला चल, यू नो दैट सर, हिम्मत न हार,
0: फकीरा चल चला चल, समथिंग लाइक दैट।
1: यस, एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स।
0: यू नो द लिरिक्स?
1: आई नो द लिरिक्स बिकॉज़ आई यूज्ड टू सिंग इट व्हेन आई वाज लिटिल। इट वाज अ पॉपुलर सॉन्ग।
0: दैट्स द ओनली रीजन आई गॉट यू एज माय को-होस्ट। हाउ लो वाज दैट?
1: How low can
0: people
1: you go?
0: Say, how dare you say that?
1: How low can
0: but
1: you go?
0: But they don't know that we can. बर्दाश्त कर लेते हैं हम ना।
1: What else? What else? We on air. We can't do anything else.
0: I know.

0: Okay.
1: Duniya mein. I feel like listening to that song. Can you play that?
2: Play it. Play it.
1: You play it. You got it. Please.
2: What's the title of the song?
1: Okay, I'll play it. Yeah. I know you too well.
2: I'm serious.
1: हमारे listeners भी हमको अच्छे तरह से जानेंगे. तो दोस्तों चलो इस गीत को सुनते हैं और उम्मीद है आपको भी ये गीत पसंद आएगा और चलो सुनेंगे इस गीत को अगर बजेगा तो हाँ दोस्तों चलो सुनते हैं इस गीत को. अब लग रहा है कि ये सब सही है यहाँ पर.

दोस्तों जिंदगी हसीन है मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है, क्योंकि सिर्फ प्यार करने वाले जानते हैं कि आन बान और शान से जीना किसे कहते हैं, है ना।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जैमिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30th अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: ओ सिया राम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
3: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस, साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
2: Wow, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व, पर एड्रेस?
3: एट शॉप 9B, सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
4: ओके, इस समय 8:08 हुए हैं दोस्तों, 9 तक हम रहेंगे और उसके बाद सताक्षी के साथ आप हो जाएंगे। 11 से पंजाबी प्रोग्राम रहेगा, 3 से निविया के साथ, ठीक है? तो प्लीज डू लिसन और चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैव यू गॉट
5: नाउ? वी विल प्ले,
4: चलो आपका एक अमिता का सुनते हैं।
5: वन ऑफ आवर फेवरेट्स।
4: ओके, ऑलराइट,
5: योर फेवरेट टू।
4: ओके, ओह या।

0: लड़के पे नजर डालता है?
1: अभी दिखाता हूँ।
2: उषा मंगेशकर सिंह बिस्वामी Oh, okay. Kesto was there. You know Kesto? Mm-hmm. The one who's always ex-drunk.
3: Always like he's drunk.
2: Yeah.
3: He used to laugh. Yeah. Something like that, eh?
2: Yeah. Kesto.
3: I have to be drunk to make the correct laugh. Yeah.
2: Have you ever been drunk in your life?
3: No.
2: You don't drink, so you don't know, yeah.
3: How would I? But I can get drunk on happiness.
2: Oh, that's a good kind of drunk.
3: Yeah.
2: एनीवे देखिए दोस्तों 18 मिनट हो गया या टाइम इज लीटिंग यू विल मैनेज टुमारो वोंट यू
3: नो
2: ओ
3: नो वी विल लीव इट आउट
2: नो डोंट लीव इट आउट यू कांट डू दैट

0: ओके इस समय चलिए
1: फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने
0: फिल्मी गाने इट्स फनी है वी इंडियंस आवर सॉन्ग्स कम आउट ऑफ मूवीज राइट
1: या
0: व्हाइल इट्स इंग्लिश इट्स पीपल अपना फीलिंग्स लिखते हैं ना आई मीन लाइक बट आवर्स इज मोस्टली ऑल टू डू विद मूवीज इजंट इट
1: या इट्स जस्ट नॉट रिटन इट्स नॉट जस्ट रिटन एज अ सॉन्ग
0: अब देखो जैसे ये अलग गाना भी This was for some movie, right? I mean...

0: जी हाँ दोस्तों, मुमताज के लिए फिल्म झील के उस पार का गाना भी आपने सुना आर डी बर्मन के संगीत पर, और ख्याल से लता जी ओके फनी दे डिडंट पुट द सिंगर देयर एनीवे ओके टाइम करीब आ रहा है दोस्तों और यहाँ से जाने का और प्रोग्राम से जाने का
1: और ब्रिस्बेन टू
0: आई एम फ्रॉम ब्रिस्बेन टू ओके गो इजी विद माय को-होस्ट ओके
1: यस प्लीज
0: या ऑल राइट चलो आर यू गोना प्ले समथिंग
1: यस आई विल
0: प्ले समथिंग या ओह लवली सॉन्ग

0: ओके, अब हमारा यहाँ से जाने का वक्त हुआ है दोस्तों. आप सभी ने साथ दिया, बहुत अच्छा लगा, और ऐसे साथ देते रहे. और अब इसके बाद में सताक्षी है, ठीक है.
1: एंड वी विल से नमस्ते, गुड बाय, हैव अ ब्यूटीफुल डे,
0: एंड ऑल हैव अ गुड डे. ओके,
1: यस,
0: डोंट लेट एनीथिंग स्पॉइल योर डे.
1: नमस्ते.

0: भोले बम भोले, भोले बम भोले।
1: सुबह ताजा तरीन मॉर्निंग्स ने दे दी है जिंदगी में एक बार फिर से दस्तक, और इस दस्तक को थोड़ा संभालिए, क्योंकि अगर आपने इस दस्तक का यानी गुड मॉर्निंग के नॉक नॉक का प्यार से वेलकम नहीं किया तो ये किसी पड़ोसी के दरवाजे पे चली जाएगी और फिर आप कहेंगे यार उसकी जिंदगी में इतनी खुशियां और हमारी लाइफ में तो आज कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, दिन निकला लेकिन यूं ही निकल गया। तो भाई आप उसे निकलने क्यों दे रहे हैं, जल्दी से उठिए, देखिए नॉक नॉक हुई है दरवाजे पे, बोलिए और प्यार से गुड मॉर्निंग को कहिए गुड मॉर्निंग। जी हाँ, क्योंकि अगर मुस्कुरा के अपने दिन का वेलकम करेंगे तभी तो दिन की खूबसूरती बनेगी ना। हाँ, और इस दिन की खूबसूरती को और भी शानदार बनाने के लिए मैं सताक्षी एक बार फिर से हूँ आपके साथ, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इट हैपेंस को लेकर। आप और मैं जब एक साथ मिलते हैं तो धमाल तो होता है ना, आज की मॉर्निंग हमारी अपनी कैसी नहीं होगी भला। तो चलिए शुरू करते हैं इट हैपेंस इस अगले ट्रैक के साथ, आप सबको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर इस सुबह।

वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन पर सताक्षी के साथ आप हैं इट हैपेंस मी और एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग सुप्रभात। वेल आगे बढ़ने का वक्त है लेकिन अभी उनको विश करने का भी तो वक्त है जिनके लिए ये दिन बहुत खास है और वो विश कर रहे हैं कि सताक्षी कब हमें विश करोगी भाई, हम कब से ये भगवान के आगे हाथ जोड़ के बैठे हैं कि हमारा नाम भी रेडियो पर अनाउंस हो। तो भाई देखिए, आपने अपना नाम तो हमें लिख कर भेजा नहीं है लेकिन हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और जिनका आज हैप्पी बर्थडे है, हम उनको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, है ना। और अगर आप हमें नाम अपने भेज देंगे तो हम बाय नेम भी आपको विश करेंगे भाई। लेकिन आपकी जिंदगी जो है वो चाहे हम नाम लें या ना लें, आपकी जिंदगी में खुशियां जो है वो बरकरार रहनी वो मैंडेटरी है ना, वो मेरी प्रायोरिटी है। अच्छा, जिनकी आज वेडिंग एनिवर्सरी है भाई, देखिए यूं तो हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग ऐसे आते जाते हैं जो हमारे होने का दावा करते हैं, लेकिन वो एक इंसान जो हर सुख दुख में आपके साथ खड़ा है वही है आपका सच्चा हमसफर, और उस हमसफर का नाम होता है पति या फिर पत्नी। तो भाई पतियों और पत्नियों, आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक अगर आज आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी है। और जिनके लिए भी आज का दिन स्पेशल और खास है उन सभी को कहूंगी ऑल द वेरी बेस्ट। चलिए बिना देर किए अगले ट्रैक के साथ आपको आगे लेकर चलते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन 1701 FM।

0: ब्रिस्बेन, क्या आप एक धमाकेदार शाम के लिए तैयार हैं? ऑस्ट्रेलिया में पहली बार रिनाउंड डिवोशनल सिंगर निखार जुनेजा ला रहे हैं भजन जानिंग का अमेजिंग एक्सपीरियंस खास ब्रिस्बेन के लिए। म्यूजिक, डिवोशन, पॉजिटिविटी और कनेक्शन से भरी इस शाम को हजारों आवाजें मिलकर बनाएंगी एक शानदार एक्सपीरियंस। फ्राइडे 30 अक्टूबर 2026, डोर विल ओपन एट 6 PM एट शैंडलर थिएटर, कॉर्नर ऑफ ओल्ड क्लीवलैंड रोड एंड टली रोड, शैंडलर। सबसे खास बात, ये सिर्फ एक म्यूजिकल इवेंट नहीं, एक मीनिंगफुल कॉज भी है। ऑर्गेनाइज बाय सिंपली ह्यूमन सुपर हीरोज विदाउट केप्स, जो कैंसर पेशेंट्स और उनकी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। हर टिकट परचेज इस ब्यूटीफुल इनिशिएटिव को सपोर्ट करेगा। प्राउड पार्टनर स्वदेश फूड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू सेलिब्रिटी पार्टनर शौर्य एंटरटेनमेंट। निखार जुनेजा, अ जर्नी विद इन, एक शाम भजन, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के नाम।
1: उसी आराम की गली में तुम जाना, वहां नाचते मिलेंगे हनुमाना।
0: टिकट्स ऑन सेल नाउ एट premiertickets.co। स्पॉन्सरशिप्स, पार्टनरशिप्स और ज्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट प्रेरणा ऑन 04302280009। प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय ऑजीज माइग्रेशन एंड एजुकेशन एंड पावर्ड बाय स्वदेश फूड्स। कम फॉर द म्यूजिक, स्टे फॉर द पर्पस, लीव इंस्पायर्ड।
2: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
3: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
2: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
3: बिल्कुल, ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम, इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ, डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओमजोर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omzorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओमजोर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मॉर्निंग्स आप सताक्षी के साथ सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एम पर। जी हाँ, आपके ब्रेकफास्ट शो को आप मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं। वैसे सच सच बताइएगा, आप में से कितनों के साथ ऐसा होता है कि जब आप एक रूम से दूसरे रूम में जाते हैं तो कुछ देर खड़े होकर ये सोचते हैं कि आप यहाँ करने क्या आए थे, और जब याद नहीं आता वापस आप प्रीवियस रूम में जाते हैं और कहते हैं अरे यार मुझे तो उस कमरे से ये चीज लेकर आनी थी। होता है ऐसा? तो भाई ये आपके मेमोरी लॉस की वजह से नहीं है, साइकोलॉजी में इसे टू डोर इफेक्ट कहते हैं। जी हाँ, जब हम एक स्पेस से दूसरे स्पेस में जाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह हम कदम रखते हैं, तो हमारा ब्रेन उस चीज को नोटिस करता है और कभी कभी वो सारी प्रोग्रामिंग को रीसेट कर देता है। आपको बहुत सोचने पर भी याद नहीं आता कि आप यहाँ क्यों हैं, और थोड़ी देर बाद जब आप अपनी स्पेस पर वापस जाते हैं सडनली आपका ब्रेन उसी मोड में वापस आ जाता है और आपको चीजें याद हो जाती हैं। फिर आप कहते हैं कि यार वहां तक गए और वापस आ गए तब तक याद नहीं आया, है ना? तो कितनों के साथ ऐसा हुआ है? अगली बार हो तो खुद को ब्लेम मत कीजिएगा, ये आपके स्पेस चेंज करने का नतीजा होता है। एक और ट्रैक मेरे साथ सुनिए और सुनते रहिए, आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 एफएम।

सदा। आपने चीज नोटिस की है, जब आप ऑटो में जाते हैं तो आपसे कोई ये नहीं पूछता कि आपके पास कितना सामान है। बस में जाते हैं तब भी कोई नहीं पूछता। इनफैक्ट ट्रेन में सफर करते हैं तब भी आपसे आपकी लगेज का वेट नहीं पूछा जाता है। लेकिन जैसे ही आप एरोप्लेन में चढ़ते हैं, आप फ्लाइट से सफर करते हैं, तुरंत आपका लगेज कितने वेट का है ये चेक किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने के लिए सामान कम होना बहुत जरूरी है, है ना। एक लिमिट है जब आप फ्लाइट में सफर करते हैं आपके लगेज की, या उस फ्लाइट की कैपेसिटी है कि वो कितना वेट लेकर जा सकती है, इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाता है। ठीक ऐसा ही हमारी लाइफ के साथ भी है। अगर आपको अपने ड्रीम्स को अचीव करना है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, अगर आपको लाइफ में सक्सेस पानी है, तो आप बहुत सारा बोझ अपने दिल पर लेकर नहीं रख सकते। ये भी वो भी सब कुछ दिमाग में लेकर चलते हैं, कंधों पर लेकर चलते हैं, उसे आपको उतारना ही पड़ेगा, वरना आप हमेशा थका थका महसूस करेंगे, आप लो एनर्जी फील करेंगे। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
3: पर आप हैं सताक्षी के साथ और ये है आपकी गानों की हैट्रिक। जी हाँ, इट हैपेंस में अभी हम हैं उस मोड पर जहाँ पर आज 3 बैक टू बैक ट्रैक्स फिर से हमारे साथ हैं। तो चलिए एंजॉय करते हैं अभी गानों की हैट्रिक का आज का ये पहला ट्रैक।

जी हाँ, गानों की हैट्रिक सताक्षी के साथ आप इसी सेगमेंट को सुन रहे हैं आपके अपने इट हैपेंस में। गानों की हैट्रिक का ये है आखिरी ट्रैक और इसके इस पार होंगी आपसे ढेरों ढेर बातें। सो कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्बेन।

0: उसको अपना। मैं चाहती हूँ इस बार फंक्शन में बेस्ट ज्वेलरी मैं ही पहनूं, पर कहाँ से खरीदूं पता ही नहीं। आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: अरे इसमें कंफ्यूजन क्या, प्रिंस ज्वेलर्स ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में, जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी के स्पेशलिस्ट हैं। दे आर इन बिजनेस सिंस 1992। यहाँ अवेलेबल हैं डायमंड नेकलेसेस, बैंगल्स, रिंग्स, इयररिंग्स, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइंस। साथ ही ज्वेलरी और वॉच रिपेयर भी होती है।
0: वाओ, तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। पर एड्रेस?
1: एट शॉप 9B सनी बैंक हिल्स शॉपिंग टाउन, कॉर्नर ऑफ कर्लम एंड 661 क्रॉम्पटन रोड, सनी बैंक हिल्स, क्वींसलैंड 4109। फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स कॉन्टैक्ट 3273-7365, दैट्स 3273-7365, और ईमेल princejewelers@bigpond.com। फैमिली बिजनेस बिल्ट ऑन ट्रस्ट।
2: दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
3: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
2: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
3: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
2: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
3: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
4: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
5: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सुबह आज नहीं हुई, लेकिन आपकी हुई है। आप बहुत लकी हैं। इससे ज्यादा जो है वो बेनिफिट लाइफ आपको दे नहीं सकती है कि आज एक और सुबह आपकी जिंदगी में आ गई है और एक और चांस आपको मिल गया है कल जो गलत हुआ उसे सीख लेने का, जो हर्ट हुआ आपकी वजह से उसे हील करने का, कल की मिस्टेक्स को करेक्ट करने का और कल से थोड़ा ज्यादा वाइजर बनने का, एक और चांस किसी को डीपली लव करने का और फॉरगिव करने में थोड़ा सा कंजूसी ना करने का। सो बहुत सारे अभी जो अचीवमेंट्स हैं वो हमें अचीव करने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं जिन्हें पूरा करना है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमें प्यार देना है। आप अपने पास में इतने स्ट्रक हो जाते हैं कि आपको अपने आज का ख्याल नहीं रहता है। अपने आज पर फोकस कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 AM।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस, सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। आपने कभी ट्राई किया है कि जब आप परफ्यूम मार्केट में जाते हैं, परफ्यूम स्टोर पर जाते हैं, तो आप डिफरेंट डिफरेंट तरह के फ्रेग्रेंस ट्राई करते हैं। अब आप वो परफ्यूम परचेज करें या नहीं, लेकिन जब आप उस स्टोर से बाहर निकलते हैं तो काफी लंबे वक्त तक वो फ्रेग्रेंस की स्मेल जो है वो आपके साथ रहती है। सेम एज फिश मार्केट में भी होता है, जब आप फिश मार्केट से लौटते हैं तो एक ऐसी स्मेल आपके साथ होती है कि आपको लगता है यार पूरा दिन खराब हो गया। सो जिस तरह के एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, हमारे अंदर वैसी ही फ्रेग्रेंस या वैसा ही एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी लाइफ का होना शुरू हो जाता है। ठीक ऐसे ही आप जैसे लोगों के साथ रहते हैं आपकी लाइफ भी वैसे ही होनी शुरू हो जाती है। हम कहते हैं ना कि यार हम तो अच्छे हैं, दूसरा बुरा है तो क्या हुआ। दूसरे की संगत का असर चाहे 2% ही पड़े आप पर, पड़ता जरूर है। इसीलिए पुराने जमाने में लोग कहा करते थे कि संगत हमेशा अच्छी रखिए। तो जैसे आपको बनना है लोगों के साथ, आपकी दोस्ती, आपका उठना बैठना भी वैसा ही होना चाहिए, खासकर उनके साथ जिनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर।